0: नहीं तो अगर आधा घंटा में भी याद आता है तो आप ब्रेक लें और आँख को बंद करें या तो फिर दूर देखें, दोनों में से एक चीज़ करेंगे तो आँख रिलैक्स रहेगा सर। दूसरा चीज़ है कि अगर काम करते हुए अगर आपको लग रहा है कि आँख में क्या चारों तरफ दर्द हो रहा है, या तो आँख में सूखापन लग रहा है, नहीं तो गर्दन में दर्द हो रहा है, तो वो भी एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का एक प्रारंभिक लक्षण है। वो सिस्टम में काम करें उसके चलते आँख पे इफेक्ट आ रहा है, तो अगर वैसा लगता है तो अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से कंसल्ट करके अपना आई का चेकअप करवाना चाहिए, नज़दीक और दूर का दोनों का पावर चेक करवाना चाहिए, और आंख में सूखापन है कि नहीं, ड्राई आई है कि नहीं, उसके लिए चेक करते हैं। जनरली सिस्टम पे काम करते हैं तो उनका आंखों में ड्राईपन होने का संभावना ज्यादा रहता है सर।
1: और ये जो टेलीविज़न बच्चे लगातार देखते हैं,
0: हाँ, टेलीविज़न और मोबाइल अभी बच्चों में बहुत बढ़ गया, क्योंकि माता पिता जो हैं जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, आजकल दोनों माँ बाप दोनों काम में रहते हैं, बच्चे को नहीं देखने वाले कोई नहीं रहते हैं। अगर बच्चे को छोड़ देते हैं केयर टेकर पे तो वो बच्चे मोबाइल देके उसको खाना भी खिलाते हैं, कोई काम पढ़ाई जो भी काम करना है पूरे मोबाइल पे ही कर देते हैं, तो उससे दिक्कत होता है। तो जितना कोशिश होना चाहिए बच्चे को मोबाइल से दूर रखना चाहिए संभव है तो। स्कूल में भी अगर बच्चे आ जाते हैं तो अगर ऑनलाइन क्लासेस अभी होता है तो टीचर से बोलना चाहिए कि हम ज़्यादा ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, अगर संभव है तो हम मैंने क्लासरूम ही अटेंड करेंगे, ऑनलाइन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जरूरी है तभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहिए, अगर कुछ प्रोजेक्ट है सिस्टम पे तो उसको बनाना चाहिए, ऐसे सिस्टम को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए सर। अगर कंपलसरी है यूज़ करना तो वही जो पहले बताया है कि आप मैंने लगातार 2-3 घंटा तक ना यूज करें। बच्चे को कभी भी मोबाइल पे मूवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए या तो लगातार वीडियो देखने के लिए नहीं देना चाहिए, कोई भी गेम का बहुत एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, गेम देखना ही खेलना है, तो वो सब चीज़ों से बचाव करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए सर
1: जी,
0: कि उसका साइड।
1: जैसे कि अभी बच्चों में ये वीडियो गेम्स और इसकी जो लत लग रही है,
0: जी
1: और बच्चे जो बाहर आउटडोर गेम्स खेलते
0: जी
1: हैं, बाहर मैदान में
0: जी
1: खेलते हैं, तो ये दोनों से ज़रा हमारे सुनने वालों को बता दीजिए कि
0: जी
1: क्या फ़र्क पड़ता है,
0: बहुत ज़्यादा
1: बाहर
0: फर्क
1: खेलने से
0: पड़ता है
1: आँखों पर क्या असर पड़ेगा
0: जी।
1: और वीडियो गेम
0: मोबाइल
1: लगातार।
0: गेम जो खेलते हैं, चाहे तो मोबाइल पे कुछ भी वीडियो देख रहे हैं या तो गेम खेल रहे हैं, बहुत लंबे अंतराल तक खेलने से उनका दूर की रोशनी होती है जो कम जाता है सर, और धीरे धीरे वो सिर्फ नज़दीक में ही देख पाते हैं, दूर का नहीं देखते हैं, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष सर। तो निकट दृष्टि दोष होने की संभावना ज़्यादा होती है उसमें। अगर फील्ड में खेलते हैं, दूर देखते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको चश्मा लगने की संभावना कम रखती है, और अगर लग भी गया चश्मा तो उसमें पावर ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन जो मोबाइल यूज़ करेंगे उनका जैसे जैसे एज बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, उनका चश्मा का पावर भी बढ़ते चल जाएगा, उनको परेशानी ज़्यादा होगी, तो उसमें बाद में फ्यूचर में जा करके उनके पर्दे में भी दिक्कत हो सकती है, और ऑब्वियसली कहीं जॉब में जाएंगे तो परेशानी होगी वहाँ पे, जहाँ पे रोशनी के लिए 6x6 विजन मांगेगा तो वहाँ परेशानी होगी
1: तो
0: सर।
1: इसका मतलब जो हम लोग टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल पर जितना धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा रुकना चाहिए और नियमित अंतराल पर बाहर देखना चाहिए, दूर देखना चाहिए, अपनी आँखों को आराम देना
0: हाँ,
1: चाहिए लगातार उससे,
0: कुछ कुछ एक्सरसाइज भी है आँखों के लिए जो करना चाहिए, जो मतलब
1: जो
0: जिस किन्हीं
1: नेत्र
0: किन्हीं को
1: रोग विशेषज्ञ
0: नेत्र रोग
1: बता सकते हैं
0: विशेषज्ञ
1: आपको।
0: बताते हैं जी, तो हम लोग
1: तो
0: बताते हैं सर।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर।
2: टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल बढ़ता उपयोग तथा आंखों की देखभाल, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर विद्याभूषण से ली गई ये भेंट वार्ता सुनी। आपसे बातचीत कर रहे थे अनिल तिवारी। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यही समाप्त होता है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है अब आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। इसी सभा में सुबह 9:10 पर श्रोता सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे निसार अहमद सिद्दीकी से अफसाना तहजीब का दरवाजा, और कलाम शायर में हम आपको सुनवाएंगे नसर आलम को। नारी जगत ये कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 12:30 पर। 1:05 पर कार्यक्रम उद्योग जगत हम आपके लिए लेकर आएंगे। कार्यक्रम में आज का विषय होगा आयुर्वेदिक चिकित्सा। 2:30 पर श्रोता सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, और युवाओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 4:30। मैथिली भाषा का कार्यक्रम भारती हम आपके लिए लेकर आएंगे आज शाम 5:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत

आशुतोष कुमार मिश्र से। शाम 6:30 पर ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल, आज आप सुनेंगे ग्रामीण महिला कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत मंदाकिनी सिंह के स्वर में, और कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7:00।

0: रात्रि 8:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम बातों बातों में। पॉडकास्ट में आज आप सुनेंगे आईपीएस श्री विकास वैभव से ली गई एक भेंट वार्ता। आपसे बातचीत करेंगे सचिन कुमार। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:45 पर प्रसारित होगा इनसाइट, और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदी परिचर्चा। इसका प्रसारण भी हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जी हाँ, समय होगा रात्रि 10:00। गीत संगीत के कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे हमारे केंद्र से आज सुबह 7:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हालचाल, और सुबह 10:00 कार्यक्रम प्रसारित होगा रसमंजरी। सुबह 7:15 पर गजल आप सुनेंगे, कलाकार होंगी आबिदा परवीन। 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे नरेश मल्होत्रा का शास्त्रीय गायन। सुगम संगीत में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे चंद कसले, कलाकार होंगे चंदन दास। सुबह 11:00 और दिन में 1:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8:00 और रात 10:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत। लोकगीतों का कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12:00। आज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संस्कार गीत, आज इसकी दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। और संध्या 7:52 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे जगजीत सिंह। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे हैं पटना, कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां MSP न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति इति।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्यप्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदं च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांक पर्यन्तं UAE, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। People to people.

0: कनेक्ट।
1: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। पेश है हालचाल। श्रोताओं, कुछ नई और पुरानी जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भरे इस संगीतमय सफर में सभी का स्वागत है। और आज है तारीख 14 मई। जी हाँ, ग्रेगोरी कैलेंडर के अंतर्गत जो है आज 134वां दिन है और अभी साल में 231 दिन शेष भी रह रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग याद करते चले श्रोताओं कि 14 मई आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ, सन 1954 में आज के ही दिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर ने यह ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हाउस ऑफ द पीपल को अब लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। यानी लोकसभा संविधान के प्रति जनता की आकांक्षाओं और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों की सजीव संस्था है। देश की नीतियों की दिशा, जनहित के विधानों का निर्माण और लोकतांत्रिक विमर्श की सबसे प्रामाणिक भूमि यही लोकसभा है। यही

वह मंच है जहां भारत की विविधता एकता में बदलती है और जहां हर नागरिक की आवाज, विचार और अधिकार को प्रतिनिधित्व मिलता है। लोकसभा केवल एक सदन नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इस दिन को याद करना भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति आदर भाव प्रकट करता है।

और श्रोताओं, आज के ही दिन देखें तो एक नज़र इतिहास की ओर, तो सन 1999 में पाकिस्तानी पत्रकार जन्म सेठी की पत्रिका फ्राइडे टाइम्स की जब थी सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट जो है लॉर्ड्स यानी इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, वो आज ही के दिन सन 2001 में भारत और मलेशिया के बीच साथ समझौते हुए थे, और सन 2010 में भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए थे। बातें फिर और होंगी समय रहने पर। इस समय आइए श्रोताओं सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से देशभक्ति गीत में कलाकार हैं महेंद्र कपूर, मनहर हेमलता और साथी, जिसे हमने लिया फिल्म राजपूत से।

श्रोता, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हालचाल का समय अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी पटना है। आइए सुनते हैं इस समय गजल कलाकार हैं आबिदा परवीन।

आविदा परवीन की गई इस गजल के साथ ही गजलों का आज का हमारा ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज आइए सुनते हैं नरेश मल्होत्रा का शास्त्रीय गायन, प्रस्तुत है आपके गायन में राग देसी। विलंबित रचना झूमरा ताल में और द्रुत रचना की बंदिश एक ताल में निबद्ध है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेब 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीला नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
5: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5

0: 5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही

0: जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे

0: कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां। पत्र के अनुसार, सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce a uniform civil code bill in State Assembly on 26th of this month. India banned export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shehrzad Pointkeyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Ninh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato' Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, A special session of the Assam Assembly will be held

0: 26 मई तक मुनाकिद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात घपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को ख़त्म कर दिया है, जिनका सबुकतोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने ज़रई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। ज़रई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वज़ीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि ज़रई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर ज़रूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से ज़रई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू ज़हबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ारत ख़ारिजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह व बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल ज़रूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमू मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहिदा इमारात گزشتہ 25 برسوں کے

0: दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का सातवां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबू धाबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासर लोगों की मदद के लिए हर ज़रूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
2: भदोही ज़िले में सबसे ज़्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मिर्ज़ापुर में 10, फ़तेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद ज़िलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिलीं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज़ालाबारी से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोज़ा मुज़ाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुज़ाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा अब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ।

0: मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुताल्लिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुताल्लिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुताल्लिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है, CBSE की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफ़े पर शाया किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाया की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। CBI के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी IPL सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर

0: समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट, उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना आज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आरा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर जदयू के कन्हैया प्रसाद तथा राजद के सोनू राय के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। 12 मई को मतदान कराया गया था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। राज्य सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि दो पहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में भी महिलाओं को अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सभी गाड़ियों के निबंधन दर में 50% की राहत दी जाएगी।
1: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
0: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले के आकार में कमी की है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रत्येक शुक्रवार को सार्वजनिक वाहनों या ई वाहनों के जरिए कार्यालय पहुंचने की अपील की है। तेल कंपनियां राज्य में अब 10 लाख से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर यह संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दरभंगा जिले में विभिन्न विकास कार्य

0: तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही वे DMCH में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के दरभंगा आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 30 मई तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने पटना में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि गरीब परिवारों के वृद्ध, निःशक्त, विधवा और कुष्ठ पीड़ित लोगों को विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इससे योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि 31 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत प्रगणक नागरिकों से 33 प्रकार के सवालों की जानकारी लेंगे। श्रीमती रंजीता ने लोगों से जनगणना के नाम पर साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील भी की है।
1: कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
0: जनगणना निदेशक की आकाशवाणी समाचार के साथ इस पूरी बातचीत को प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से प्रसारित सामयिक चर्चा के तहत सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम शनिवार शाम 7:52 से प्रसारित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पटना, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत शाम 7 से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज ने लोगों से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में सहयोग की अपील की है।
5: शाम को 7 सायरन बजने के साथ साथ बिजली को कट कर दिया जाएगा, तो सभी नागरिकों से अपील है कि इस ब्लैकआउट की एक्सरसाइज में आप लोग संजीदगी से इसमें हिस्सेदारी लें और लाइट कट होने के बाद ब्लैकआउट के दौरान पूरे शहर में अंधेरा होना चाहिए, उस उद्देश्य की पूर्ति आप लोग सभी लोग मिलकर करें। प्रयास है ये, अभ्यास है ये, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
0: मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और

0: कटिहार सहित 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
1: दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में प्रदेश में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस बीच प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 38.8 और पटना का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 3 जून को पटना और अन्य जिलों में चयनित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटी की 173 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा अमृता ने कुछ देर के लिए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभाई। बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने अमृता को यह अवसर दिया। इस दौरान अमृता ने पुलिस पदाधिकारी बनकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। भागलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जनगणना कार्य में लापरवाही के मामले में 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर जिले में घरेलू गैस आपूर्ति में अनियमितताओं को लेकर छापेमारी अभियान के दौरान 4 गैस एजेंसियों के गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शिवहर जिला कृषि कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक विजेंद्र कुमार गिरी को 8,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी एक महिला से खाद दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर रिश्वत के रूप में रुपए ले रहा था। मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम ने स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। शम्स ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए ये पदक हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर में जापान में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा गेम्स की 3 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई। इसी खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रस्ताव किए गए स्वीकृत। कैबिनेट का फैसला, 2030 तक बैटरी चालित वाहनों की 30% हिस्सेदारी करने की योजना। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, भाषाओं की खामोशी से बौद्धिक विरासत ही नहीं जिंदगी भी खतरे में। बुजुर्गों से संवाद उनके किस्से देंगे नया जीवन। प्रभात खबर सीबीएसई 12वीं के नतीजे से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, साइंस में पटना के रोहन, आर्ट्स में अतुल और कॉमर्स में गया की माही कुमारी स्टेट टॉपर। आज अखबार ने लिखा है, बिहार के 8 जिलों में बनेंगे नए हाईटेक थाना भवन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चरपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

ये फूल कलियां बहार खुशबू, ये नहायत उम्दा सी गज़ल आप महसूस हो रहे थे। आवाज़ थी पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की। सामिन, आज की बात में पेश है बच्चे, समाज का मुस्तकबिल। बच्चे किसी भी कौम और समाज का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार शहरी, मुल्क के रहनुमा, डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद और साइंसदान बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे समाज का मुस्तकबिल है।

0: अगर बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए और उन्हें मेयारी तालीम से आरास्ता किया जाए तो वो मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की में नहायत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बच्चों की जिस्मानी, जहनी और अखलाकी तरबियत ये बहुत ही ज़रूरी है। वालिदैन असातिदा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सच्चाई, मेहनत, दयानतदारी और एहतराम इंसानियत का दर्स देते रहें। एक अच्छा माहौल बच्चों की शख्सियत को निखारने में नहायत ही मददगार बनता है और उन्हें कामयाब इंसान बनने में मुआविन होता है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को मेयारी तालीम, बेहतर सेहत और हिफाजत पर ख़ास तवज्जो दे ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल की तामीर व तरक्की कर सकें। खुशहाली और तरक्की याफ्ता समाज वही होता है जहाँ बच्चों को मोहब्बत, तालीम और अच्छी तरबियत हासिल होती हो। बच्चे ही मुल्क व कौम का असल सरमाया है, वही समाज का रोशन मुस्तकबिल हैं। इसलिए उनकी अच्छी परवरिश और तालीम से ही एक मजबूत और कामयाब समाज वजूद में आ सकता है और बचपने में जो चीज़ उनके जहन और दिमाग में पैवस्त कर दी जाती है वो पूरी ज़िंदगी उन्हीं के महवर में वो इंसान अपने आप को पाता है। आलम खुर्शीद का शेर है, मैंने बचपन में अधूरा ख्वाब देखा था कोई, मैंने बचपन में अधूरा ख्वाब देखा था कोई, आज तक मसरूफ हूँ उसी ख्वाब की तकमील में। तो सामीन अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब और अब पेश खिदमत है एक अफसाना। मौजू है तहजीब का दरवाज़ा। अफसाना निगार हैं जनाब निसार अहमद सिद्दीकी। मुलाहिज़ा हो।
1: पिया के घर में कदम रखते ही मेरी पहली नज़र सहन के कोने में खड़े नीम के बूढ़े दरख्त पर पड़ी, जिसने बुजुर्गी के साथ साथ सहन को अपनी घनी और नरम छाँव से ढांप रखा था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दो बूढ़े नरम लहजों वाले बुजुर्गों ने इस घर को अपनी आगोश में समेटा हुआ था। ये कोई महल न था, बस चार कमरों का खूबसूरती से सजा और इसमें रहने वालों की मोहब्बत की खुशबुओं में बसा हुआ एक आम सा घर था। जिस कमरे में मेरी सेज सजाई गई थी वो भी बड़ी नफासत और खूबसूरत सी सजा हुआ था। उसके कोने कोने से मोहब्बत की खुशबू सी फूटती महसूस हो रही थी। दीवारें गो के चूने से रंगी हुई थीं, मगर चूने की महक को ताज़ा गुलाबों की खुशबू ने अपने अंदर उतार लिया था और कमरे में ताजगी भर देगी। अभी मैं कमरे का जायजा लेने मसरूफ थी कि अचानक मेरी नज़र दाखिली दरवाजे के अलावा एक और दरवाजे पर जा ठहरी, जिस पर खूबसूरत रंगों वाला पर्दा लगा हुआ था। उसके दूसरी तरफ क्या था कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाया। उस वक्त कमरों के अंदर बाथरूम का रिवाज नहीं हुआ करता था, इसलिए तजस्सुस और बढ़ गया। आखिर वो हमारी शादी की पहली रात थी और ऐसे में बराबर में एक और कमरे का तसव्वुर, जिसका दरमियानी दरवाज़ा भी खुला हो, मेरे लिए काफ़ी उलझन का बायस बनने लगा। जबकि दूसरी तरफ किसी किस्म की कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। मैं भी किन बातों में उलझ गई। मुझे तो आने वाले लम्हात का ख्याल आना चाहिए था, और बस ये सोचकर मैं खुद ही शर्मा कर हंस पड़ी। कुछ ही पल गुजरे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और कोई अंदर दाखिल हुआ। खुशबू के एक भरपूर झोंके ने मुझे आने वाले के बारे में सब कुछ बता दिया और मैं अपने आप में सिमटती चली गई। जैसे ही वो मेरे बराबर बैठे, मुझे एक अजीब से खौफ ने आ घेरा। सुनिए, इस कदर नर्म और हलावत भरी आवाज़ सुनते ही मेरा खौफ कुछ कम हो गया और मैंने कदर मध्यम मगर पुरमाद लहजे में कहा, जी मुझे आपसे बहुत सारी ज़रूरी बातें करनी है। میں چونکہ

0: अपने घर में तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं। और आज के बाद आप भी मेरे साथ इन तमाम जिम्मेदारियों में शरीक हो चुकी हैं। बड़े होने के नाते अम्मी अब्बू ने ये कमरा, जो इस घर का सबसे बड़ा और रोशन कमरा है, हमें दिया है। इससे पहले ये कमरा मेरे अम्मी अब्बू के पास था और उससे पहले मेरे दादा दादी के पास। अब्बू की शादी पर ये कमरा अब्बू को दिया गया था और अब ये हमारे हिस्सा में आया है। जिस तरह घर वालों ने हमें बड़ा समझकर ये इज्जत दी है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम भी उनकी इस उम्मीद पर पूरा उतरें। मेरे माँ बाप ने अपनी बरसों की रवायत को कायम रखते हुए हम पर इत्मीनान किया है। इस कमरे के दाखिली दरवाजे के अलावा जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, वो दूसरे कमरे में खुलता है और आज तक ये दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं हुआ, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इस बात का ख़ास ख्याल रखें। मैंने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा, शायद मेरे चेहरे पर गोमगो की कैफियत नुमाया हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे दोबारा मुखातिब करते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, हमारे घर में तहजीब और आदाब का बहुत ख्याल रखा जाता है। आपकी इजाज़त के बग़ैर कोई भी कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और आंखें झुका दी। उसके बाद दिन, हफ्तों, महीनों और सालों में बदलने लगे, मगर पहली रात से अब तक के सफ़र में दरवाज़ा कभी किसी तरफ से बंद ना हुआ। गर्मी, सर्दी, खजां या बाहर कितनी ही मौसम आए गुजर गए, मगर घर की रवायत अब भी वैसे ही कायम थी जैसे कई पुश्तों से चली आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने करवट ली, बूढ़े और नर्म लहजों वाले लोग मनु मिट्टी तले जा सोए और नए ज़माने के अंदाज कुछ अजीब व गरीब सूरत अख्तियार करने लगे। मगर हमें तो अपनी तरबियत पर पूरा इत्मीनान और भरोसा था। हमारे बच्चे अब हमारे सरों से ऊपर हो चले थे। आखिर वो घड़ी भी आ पहुंची जब वक्त ने अपने आप को फिर एक बार दोहराया और हमारे घर के आंगन में बड़ी बहू ने कदम रखा। रसूमात वगैरह से फारिग होने पर बहू को उसी कमरे में पहुंचा दिया गया जो आज से पहले तक मेरी आरामगाह थी, मगर रवायत के मुताबिक अब उस पर बड़ी बहू का हक था। बराबर वाला कमरा अब मेरे इस्तेमाल के लिए हो गया था। मैं भी तमाम मेहमानों से फारिग होने के बाद खुदा का शुक्र अदा करती हुई अपने नए कमरे में दाखिल हुई। थकन जिस्म को चूर चूर कर चुकी थी, मगर खुशी के एहसास ने अब तक उसे संभाला हुआ था। सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठते हुए नज़र दरमियानी दरवाजे पर जा ठहरी, जिस पर आज भी मुझे मान था कि वो ना पहले कभी बंद हुआ ना अब बंद होगा। मगर ये क्या, मैं हैरत से आँखें फाड़ फाड़ कर दरवाजे को देख रही थी, क्योंकि आज दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद कर दिया गया था।
1: सामीन, आप महजूद हो रहे थे अफसाना से, मौजूद था तहजीब का दरवाज़ा। अफसाना निगार थे जनाब निसार अहमद सिद्दीकी। अब चलते हैं शेर व शायरी की जानिब और आज कलाम शायर के तहत अपना कलाम लेकर हाजिर खिदमत हैं जनाब नसर आलम, आपकी समातों के हवाले।
2: बच्चों को तालीम दिलाने की खातिर

ना जगह साई मेरी दुनिया में करामत देना, जगह साई मेरी दुनिया में करामत देना। और शेर देखिए, मैंने दामन को अभी तक है बचाए रखा, मैंने दामन को अभी तक है।

देना। और ये शेर भी देखिए कि आज का इश्क तो शोला की तरह होता है, आज का इश्क तो शोला की तरह होता है।

कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब नसर आलम। अब बज़ मौसीकी में पेश खिदमत है ये उम्दा सी गज़ल, आवाज़ है जगजीत सिंह और चतरा सिंह की, मुलाहिजा हो।

बस मौसीकी में आप महसूस हो रही थी गजल से आवाज थी जगजीत सिंह और अनुराधा पौडवाल की। सामीन अब अगली गजल पेश खिदमत है सुरेश वाडकर की आवाज में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी।

कर्मा फिल्म का गीत श्रोताओं भी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज और साथियों का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

लीजिए पेश है ऐश किंग और शशा त्रिपाठी के स्वर में ये गीत फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। गीत लिखा है इराफत महमूद और तनिष्क बागची ने, संगीत तनिष्क बागची का है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आइए सुनते हैं श्रोताओं, मीत ब्रदर्स संजान फिएट, यासिर देसाई और खुशबू गरेवाल के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है शिमला मिर्च। कुमार के बोल को संगीत से सजाया है खुद मीत ब्रदर्स और यासिर देसाई ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

श्रोतो, हसर जयपुरी का गीत शंकर जयकिशन की धुन पर आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का आज का हमारा ये कार्यक्रम रसमंजरी अब यही समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर लीजिए पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज आइए सुनते हैं कुछ गजल। कलाकार हैं चंदन दास। तो पहले पेश है चंदन दास की गाई ये गजल। शायर हैं नासिर काजमी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक,

0: आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पैम सईदी की लिखी गजल थी, आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में। इसी आवाज में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगली गजल। शायर हैं नुसरत बद्र।

रमाल सहगल की लिखी गजलती श्रोता हूँ, आप सुन रहे थे अभी चंदन दास की आवाज़ में। इसी के साथ सुगम संगीत का आज का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे ये प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हमको दीवाना कर गए। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं इस फिल्म के लिए गाया गाना सोनू निगम तुलसी कुमार की आवाज में। आपको बताते चले इसके पहले जो गीत आपने सुना था फिल्म थी घराना और कलाकार थे मोहम्मद रफी।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को है। श्रोता सुनेंगे बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में संस्कार गीत की दूसरी कड़ी। पहले ये संदेश।
6: अरे, हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
7: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
8: आज ही अपने घर लाइए।

0: आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
1: घीउढारी की विधि में गौरी गणेश तथा सप्त मातृकाओं की पूजा कर नए पीढ़े पर सात सिंदूर की लंबी पंक्ति बनाकर वर या वधु के माता पिता द्वारा मंत्र के साथ घृत धारा मंडप में गिराई जाती है। इस अवसर पर लड़के या लड़की का मामा अपनी बहन के पहनने के लिए वस्त्र लाता है। उसी वस्त्र को पहनकर माता अपने पति के साथ घीउढारी की विधि संपन्न करती है। इस अवसर पर अगर लड़के या लड़की का मामा नहीं आता तो लड़के की माता विकल हो उठती है। वह दासी से बार बार भाई का रास्ता देखने को कहती है। देवर कहता है कि भाभी तुम आंसू मत बहाओ, मैं तुम्हें पियरी ला कर दूंगा। किंतु कोई स्त्री अपने नैहर की कैसे हेठी सहे, उसे तो नैहर से ही पियरी आने की आस है।

मंडप में दूल्हा दुल्हन के पैरों के नाखून काटे जाते हैं। इस विधि को नहछू कहते हैं। नाइन दुल्हन के पैरों में महावर लगाती है। जिस समय नाइन ने सीता के चरण छुए, उसी समय नाई के द्वार पर मानो लक्ष्मी आ बैठी। नाइन ने 3-4 नख काटे और उसका भंडार मणियों से भर गया। जब उसने अंतिम नख काटा तो उसके घर में जैसे सोने की दीवार बन गई और वह चकित हो सीता और माता सुनैना की ओर देखने लगी। सुनैना ने उसे 10 लाख का हार दिया और वह प्रसन्न मन से घर गई। उसके द्वार पर 1000 हाथी झूलने लगे। ऐसा ही कुछ वर्णन है इस नहछू गीत में।

विवाह से पूर्व वर या कन्या को मंडप में बिठाकर दूब, अक्षत, हल्दी, तेल आदि से चुमाया जाता है। इस विधि को चुमावन कहा जाता है। राम का विवाह है, मिलजुल कर लोग चुमावन की विधि संपन्न करना चाहते हैं। सुंदर सखियां हाथ में सोने का हार लिए खड़ी हैं। कौशल्या महारानी समेत तीनों माताएं राम का चुमावन करती हैं। अयोध्या में आज उत्साह छाया हुआ है। प्रस्तुत है ये चुमावन गीत।

दूल्हे का सेहरा गूंथने के लिए सुंदर मालिन को बुलाया जाता है। लाखों का सेहरा है, देखना ये है कि दादा, बाबा, चाचा या भैया इस सेहरे को कितने लाख देकर मोल लेंगे। सेहरा गीत मुस्लिम लोक परंपरा में पाए जाते हैं। गायन शैली भी इनकी विशेष होती है। सेहरा गीत बड़े ही कर्णप्रिय होते हैं।

मुस्लिम लोक परंपरा में ही बन्ना गीत की भी प्रथा है। इस गीत में बन्ने यानी दूल्हे की साज सज्जा का वर्णन होता है। मोती दाने सा बन्ना शोभा में किसी से कम नहीं। सुंदर सुहाना बन्ना मौरी में, जोड़े में, अंगूठी में या मोजे में इत्र लगाकर बन्नी को ब्याहने जाएगा और खुशी से घर लौटेगा।

विवाह के लिए जब बारात प्रस्थान कर जाती है तो घर के प्रायः सभी पुरुष बारात में चले जाते हैं। घर की सुरक्षा के लिए स्त्रियां रात्रि जागरण करती हैं और तरह तरह के स्वांग करती हैं। इस स्वांग को ही डोमकच कहते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
4: अंतराल से पूर्व आप सुन रहे थे बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में संस्कार गीत की दूसरी कड़ी। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, दिन के 12:30 हो रहे हैं और अब आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।

नारी जगत सुनने वालों को नमस्कार। बहनों, बाल कल्याण, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है और इसमें उस बच्चे की परिवार की सबसे अहम भूमिका होती है। दूध के पहले घूंट से लेकर बच्चे के भविष्य निर्माण, हेतु पोषण, भावनात्मक समर्थन, सुरक्षा, शिक्षा, नैतिक विकास और समाजीकरण में परिवार की ही सबसे बड़ी भूमिका है। औपचारिक शिक्षा से पहले बच्चा परिवार में ही अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्य सीखता है। तभी तो कहते हैं परिवार हमारी प्रथम पाठशाला है।

0: बहनों, स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत में महिला उद्यमियों की संख्या और भागीदारी दोनों निरंतर बढ़ रही है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआती चरण में अवधारणा और प्रोटोटाइप विकास तथा उत्पाद परीक्षण के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। उद्यमिता कार्यक्रम की मदद से महिलाएं अपने व्यवसाय की बारीकियां भी सीख सकती हैं। आज भारतीय महिलाएं मुख्य रूप से शिक्षा, लघु उद्योग, स्वास्थ्य और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। तो अगर आप में भी रुचि है और हुनर है तो इस क्षेत्र में आने से झिझके नहीं, समाज और सरकार दोनों आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आइए सुनते हैं काव्य पाठ डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी से।
1: मेरी कविता का शीर्षक है सच्चे वीर। देश की खातिर, देश की खातिर मर मिटने को रहते हैं तैयार वीर। देश की खातिर मर मिटने को रहते हैं तैयार वीर। संकट को ये धता बताते बढ़ते जाते यार वीर, बढ़ते जाते यार वीर। हर साजिश की पोल खोलते घायल करते चला के तीर। दुश्मन की हो चाल भी जैसी करते सब पर वार वीर, करते सब पर वार वीर। देश की खातिर मर मिटने को रहते हैं तैयार वीर। पर्वत मुकुट शीश हमारा आन बान सरताजगीर, आन बान सरताजगीर। आने न देते आँच तनिक भी देश के सच्चे सैनिक धीर, देश के सच्चे सैनिक धीर। यत्र तत्र सर्वत्र नजर है रखते जैसे पैनी तीर। देश की खातिर मर मिटने को होते हैं तैयार वीर। देश की खातिर मर मिटने को होते हैं तैयार वीर। नभ में नजरें चीलों जैसी जल में जहाज के जाल चीर। नभ में नजरें चीलों जैसी जल में जहाज के जाल चीर। थल में थमे नपल भर भी ये भारत के लाल वीर। देश की खातिर मर मिटने को रहते हैं तैयार वीर। रंग लहू का लाल ये हैं भारत के लाल। कतरा कतरा लहू बहाते देश का ऊंचा भाल वीर। दिवा रात्रि का भान नहीं बस लक्ष्य शत्रु को कर भयभीत। क्षण क्षण प्रतिपल होता रहता मन से मन का युद्ध नित। देश की खातिर मर मिटने को रहते हैं तैयार वीर, रहते हैं तैयार वीर। गिरे न भीत भारत के रक्षक करते सार्थक जीत वीर। भाई भतीजे भाभी संगनी जुदा होते बहनों के वीर। देश की खातिर मर मिटने को रहते हैं तैयार वीर। देश की खातिर मर मिटने को कई पुस्तें तैयार वीर। कई कई पुस्तें

तैयार वीर, देश की खातिर मर मिटने को रहते हैं तैयार वीर, रहते हैं तैयार वीर। कविता का शीर्षक शक्ति की शक्ति। शक्ति की भक्ति जिसने भी की, शक्ति की भक्ति जिसने भी की, शक्ति ने उस पर ऐसी भक्ति की, जीवन डगर को सरल बनाया, जीवन डगर को सरल बनाया, संघर्षों में उसको जीना सिखाया, शत्रु की सत्ता को छत विच्छत की, शक्ति की भक्ति जिसने भी की, शक्ति ने उस पर ऐसी भक्ति की। शक्ति की शक्ति पर सबको भरोसा, शक्ति की शक्ति पर सबको भरोसा, कर्मों के फल को सभी को परोसा, कर्मों के फल को सभी को परोसा, दुष्टों का दमन कर भय का हरण की, दुष्टों का दमन कर भय का हरण की, नारी के रूपों को खुद में वरण की, भक्ति की शक्ति से पाया संपत्ति, कुमति से अपने लाई विपत्ति, शक्ति की शक्ति जिसने भी की, शक्ति ने उस पर ऐसी भक्ति की, सब रूपों की महिमा निराली, सब रूपों की महिमा निराली, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा या काली, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा या काली, सर पर सभी को दया का है साया, सर पर सभी को दया का है साया, सर को झुकाया आशीष पाया, सर को झुकाया आशीष पाया, माता के दर पर वो आया है खाली, माता के दर पर वो आया है खाली, आंसू के फूल संग उम्मीद की थाली, माता ने सभी की मुरादें की पूरी, सबकी तू रक्षक है, सबकी तू रक्षक है, जय तेरी अम्बे, जय जय जय अम्बे, जय हो जगदम्बे, जय जय जय अम्बे, जय हो जगदम्बे, जय हो जगदम्बे, जय हो जगदम्बे। इस कविता का शीर्षक है उसकी प्रेम कथा। नहीं होती पूरी, नहीं होती पूरी उसकी प्रेम कथा, करती है वो प्रेम, करती है वो प्रेम सबसे, पेड़ों से, पौधों से, पशु से, पक्षी से, कीटों से, पतंगों से, परिवार से, मगर नहीं करता उससे कोई प्रेम, मगर नहीं करता उससे कोई प्रेम, सब उसका फायदा उठाते हैं, समस्त ब्रह्मांड ही उसके परिजन, उसके समक्ष सभी है खास, कोई नहीं आमजन, रिश्ते लताओं से फैले, रिश्ते लताओं से फैले, स्नेह की छाव गगन समान, समाले आगोश में अपने, न्याय पर अडिग सख्त जड़ों सी, मजबूत पकड़ के छाल सी समेटे, अपनों के बीच ही अकेली, सबों के लिए एक पहेली, बूझना उसे उतना ही आसान, बूझना उसे उतना ही आसान, पर उसे समझना कोई चाहे तब तो वह जी रही तरस पर, क्रोध की फर्श पर पांव धर, अधर पर प्रेम की ओस की टपक सी चंद सांसे उधार ले, कब तलक करती रहेगी वो प्रेम, प्रेम के अथाह सागर उड़ेलती रहेगी सबों पर, उसे उसका प्रेम प्राप्त होगा, उसे उसका प्रेम प्राप्त होगा, तड़प प्रेम पाने की आकांक्षा डूब जाने की, आकंठ डूब जाने की, नेत्र आकुल, वक्त आए अनुकूल, परिस्थितियां प्रतिकूल, प्रतीक्षारत प्रतिपल प्रतिक्षण हो रही नष्ट, पथ भ्रष्ट प्रकृति कब तलक करती रहेगी प्रेम सबसे, प्रकृति कब तलक करती रहेगी प्रेम सबसे, अपना धर्म निर्हाती करती रहेगी प्रेम, प्रेम बस प्रेम, नारी सी प्रकृति दोनों बस सहना ही जाने, प्रेम में पाना शायद अपराध है, प्रेम में पाना शायद अपराध है, इनके लिए पाना नहीं देना इनका धर्म, देना इनकी नियति, समय रहते चेत जाए, करें मदद इसकी पूरी हो, स्त्री की प्रेम कथा, प्रकृति की प्रेम कथा, प्रकृति की प्रेम कथा। लोग अपनी सुविधाओं के लिए बड़ी तेजी से पेड़ जंगलों को काटते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण कहाँ जा रहा है इसका ध्यान किसी को नहीं है। दरख्त गम अपना बताएं किसे, मिटाने पर तुला जमाना जिसे, दरख्त गम अपना बताए किसे, मिटाने पर तुला है जमाना जिसे, है गमे दरख्त को जानना जरूरी,
है गमे दरख्त को जानना जरूरी, मिटा करके हस्ती बचेगी।

0: क्या तेरी, मिटाकर के हस्ती बचेगी क्या तेरी, धरा की धरोहर को धरना जरूरी, धरा की धरोहर को धरना जरूरी, विपिन को मिटाया क्या इतना मजबूरी, विपिन को मिटाया क्या इतना मजबूरी, पगडंडियां बदलकर सड़क है बनाना, पगडंडियां बदलकर सड़क है बनाना, गिरी व तरवर का बीता जमाना, गिरी व तरवर का बीता जमाना, जरा तू ठहर कर, जरा तू ठहर कर सोच सचेत हो, जरा तू ठहर कर सोच सचेत हो, विचार कर, न पेड़ न पौधे न वन ही न उपवन, न पेड़ न पौधे न वन ही न उपवन, नदियां भी सूखी लुप्त हो रही हैं गंगा, नदियां भी सूखी लुप्त हो रही हैं गंगा, मानव ने पृथ्वी से लिया कैसा पंगा, मानव ने पृथ्वी से लिया कैसा पंगा, अस्तित्व को मिटाया तो होना है दंगा, संस्कृति की जड़ों को हिलाया भी ऐसा, संस्कृति की जड़ों को हिलाया भी ऐसा, समय पर न पानी न हो रही वर्षा, समय पर न पानी न हो रही वर्षा, अल्ट्रा की किरणों से, अल्ट्रा की किरणों से तप्त होती धरा, अल्ट्रा की किरणों से तप्त होती धरा, हरकत भी ऐसी जमाने को आती नहीं शर्म जरा, पीपल व बरगद है दिखता किसे, पीपल व बरगद है दिखता किसे, दरख्ते गम अपना बताए किसे, कोई तो समझे भाषा भी उसकी, कोई तो समझे भाषा भी उसकी, कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है दरख्त गम अपना, प्रदूषण बढ़ाया बीमारी बढ़ी, प्रदूषण बढ़ाया बीमारी बढ़ी, प्रकृति की प्रकृति ही बदली है सारी, प्रकृति की प्रकृति ही बदली है सारी, शीत घाम और मेह की बदली है चाल, भारत की शान जो विश्व का भाल, कटते तरुवन से किया बुरा हाल, समय से सचेत हो सोच कैसे संचित, प्रकृति की परंपरा पवित्र व बची रहे, प्रकृति की परंपरा पवित्र व बची रहे हमारी प्रकृति की सुंदरता, मूक स्वर में कहता बहुत कुछ है भला, मूक स्वर में कहता बहुत कुछ है भला, बीते बरसों सदियां भी बीती, बीते हैं बरसों सदियां भी बीती, दरख्ते गम अपना बताए किसे, दरख्ते गम अपना बताए किसे।
1: बहुत सुंदर काव्य पाठ हमने सुना। ये तो सच है कि पर्यावरण का नुकसान करने में मनुष्य सोचता नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चों की भविष्य की तो चिंता होनी चाहिए। अगर हम पर्यावरण का नुकसान करेंगे, प्रकृति की क्षति करेंगे, तो हमारे बच्चों के लिए न ऑक्सीजन बचेगा, न जल और न हरी भरी धरती। तो दूसरों के लिए नहीं, कम से कम अपने परिवार के लिए ही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही हम पर्यावरण संरक्षण सीखें और समझें। बहनों, हम जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ रसोई बगिया लगा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर एक पौधा गिफ्ट करें और देखें आपकी खुशियों का पेड़ किस तरह लहलहाता है। देश में महिला सशक्तिकरण के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता, और महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास एक महिला को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। सरकार की स्किल इंडिया मिशन के तहत लाखों महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, सिलाई बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर या अन्य कला क्षेत्र में महिलाओं के हुनर को आगे बढ़ाकर उनमें विकास और गुण विकसित किए गए हैं। साथ ही कौशल विकास योजना से रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है, कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। बहनों, कौशल विकास से व्यक्तिगत आनंद के अलावा घरेलू क्षमता में सुधार और जीवन स्तर में भी सुधार होता है। आप भी किसी ऐसे स्कीम के साथ जुड़िए और अपने कौशल का विकास करके अपने व्यक्तित्व को भी निखारिए। आइए सुनते हैं एक सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और

बहनों, नारी जगत कार्यक्रम में हम स्त्रियों के जीवन से जुड़े सभी मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मनोरंजन के साथ साथ कुछ उद्देश्यपरक और कुछ जानकारी देने वाली सूचनाएं भी हम आप तक पहुंचाएं। हमें उम्मीद है नारी जगत कार्यक्रम को आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रम से। अलका को विदा दीजिए।

श्रोता सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता इस समय सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। हिंदी में समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance.
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए

0: प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगटोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम उद्योग जगत के अंतर्गत सुनिए भेंट वार्ता। जीवन रक्षा के साथ रोजगार भी। आयुर्वेद विषय पर डॉक्टर शालिनी झा से बातचीत कर रहे हैं सचिन कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम उद्योग जगत में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारा विषय है आयुर्वेद जीवन रक्षा के साथ रोजगार भी। और इस विषय की जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर शालिनी झा को आमंत्रित किया है। आज इनसे हम आयुर्वेद के बारे में भी जानेंगे और क्या क्या संभावनाएं हैं रोजगार के क्षेत्र में, इसकी जानकारी भी हम इनसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शालिनी झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार।
3: डॉक्टर, सबसे पहले

0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद आमतौर पर हम समझते हैं कि ये सिर्फ एक चिकित्सा की पद्धति है, पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसके और क्या-क्या आयाम हैं, क्या समझ सकते हैं हम आयुर्वेद से?
1: जो आयुर्वेद नाम है उसमें दो टर्म्स आते हैं, जैसे कि आयु और वेद।
0: जी
1: आयु का मतलब होता है जीवन, और जो वेद है वो तो मतलब बेसिकली जो आयुर्वेद है वो जीवन की का विज्ञान है। वेद मतलब विज्ञान। तो आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि वो आपको सही जीवन, सही तौर पे जीवन जीना भी सिखाता है।
0: जी जीवन जीने की शैली भी आयुर्वेद हमें बताता है। तो किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, क्या आहार विहार होना चाहिए, इस पर कृपया प्रकाश डालें।
1: तो आयुर्वेद का जो मुख्यतम सिद्धांत है वो है, कहा जाता है कि सबसे पहले आहार, फिर विहार, फिर औषध। मतलब यदि आपका आहार और विहार ठीक रहेगा तो आपको औषध लेने की आवश्यकता होगी ही नहीं।
0: बिल्कुल
1: तो इसी क्रम में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद जो है एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम की बात की जाती है। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको ठीक रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग का प्रशमन करना।
0: बिल्कुल, आपने एक सिद्धांत की बात कही आयुर्वेद में, उसके और भी बहुत सारे सिद्धांत होंगे, जैसे कि चिकित्सा पद्धति किस प्रकार काम करती है, रोग को कैसे पहचाने, रोग का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है।
1: सबसे पहले आयुर्वेद जो है वो तीन मुख्य दोषों पे, मतलब तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करता है, जो कि
0: बिल्कुल
1: है वात, पित्त और कफ। और साथ ही में जो आपकी अग्नि है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये कहा जाता है कि वात, पित्त, कफ और अग्नि अगर आपके शरीर में साम्यावस्था में या फिर नॉर्मल स्टेट में है तो आपको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब कभी वो अपने जो मात्रा है उससे बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो आपको रोग हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपना जो जीवन शैली है, जो अपना डाइट है, जो अपना लाइफस्टाइल है, वो उन सब पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए ताकि जो ये हमारे त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, वो साम्यावस्था में रहे और हमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो।
0: जी, यानी कि जीवन शैली को ठीक रखने से ये तीनों दोष शरीर में बैलेंस स्थिति में रहते हैं, जिससे रोग नहीं होने की स्थिति उत्पन्न होती है।
1: जी
0: कुछ मिसकंसेप्शंस आयुर्वेद के साथ भी जुड़े हैं। आप चूंकि इस क्षेत्र की चिकित्सक हैं, आपने इसकी पढ़ाई की है, तो आपके अनुभव के अनुसार कौन कौन से ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं हैं जो आयुर्वेद के साथ जुड़ी हैं, और उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगी श्रोताओं से?
1: आयुर्वेद को लेके जो सबसे बड़ा मुख्य मिसकंसेप्शन या फिर जो भ्रांति है वो है कि आयुर्वेद स्लो वर्क करता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको आज मैं बर्स्ट आप सभी के सामने करना चाहूंगी। तो सबसे पहली बात है कि जब कभी कोई रोगी हमारे पास अप्रोच करता है तो वो दर बदर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथीज में वो ट्रीटमेंट लेके, मतलब जो मैंने पर्सनली जो पेशेंट्स देखे हैं वो 30 साल, 40 साल पुरानी क्रॉनिक कंडीशंस लेके हमारे पास आते हैं।
0: यानी कि
1: तो
0: हर जगह से हार गए तब आयुर्वेद।
1: हाँ, जब हर जगह से हार गए तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो इस केस में ऐसा हो जाता है कि आप किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको समय लगेगा, क्योंकि वो
0: बिल्कुल
1: जो बीमारी है वो आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। तो ये मुख्य कारण है। बाकी जैसे काफ़ी डिजीजेज हैं, जैसे ज्वर है, मतलब जैसे फीवर हो
0: फीवर है
1: गया, या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, या
0: जी,
1: फिर मेंटल इश्यूज हैं,
0: या कोई दर्द की
1: या
0: समस्या
1: फिर
0: है।
1: पेन है। तो इन
0: जी
1: सब में आयुर्वेद के काफ़ी प्रोसीजर्स हैं, जैसे विद्धकर्म है, अग्निकर्म है, पंचकर्म है। तो ये सब बहुत क्विक, इनफैक्ट जो स्किन कंडीशंस हैं उनमें भी आयुर्वेद बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है।
0: जी तो हम अमूमन ये देखते हैं कि दर्द हुआ, फीवर हुआ, तो हम अंग्रेजी दवा लेकर जो घरों में भी आमतौर पर रहती हैं उनका उपयोग कर लेते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है। तो क्या आयुर्वेद में भी उतनी जल्दी ही उसका रिजल्ट आता है?
1: आयुर्वेद में भी उस चीज का रिजल्ट उतना ही आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि हमें हर चीज का एकदम क्विक सॉल्यूशन चाहिए। हमें फीवर हुआ तो हम चाहते हैं कि फट से हमारा फीवर सबसाइड हो जाए। तो जैसे कि फीवर है तो ये करें कि आप लंघन करें, मतलब जब आपको बुखार है उस समय पे आप कोई भी लघु भोजन, जो भी इजिली डाइजेस्टेबल फूड है, जैसे कि दलिया है, मूंग दाल की खिचड़ी है, नारियल पानी है, ये सारी चीजें अगर आप लेंगे तो आपकी जो अग्नि है उसको भी समय मिलेगा अच्छे से कार्य करने का, और आप देखेंगे कि आपका जो ज्वर है

0: या फिर जो आपका फीवर है वो अपने आप ही सबसाइड हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आयुर्वेद जो है उसका सबसे मेन जो काम है वो यही है कि कोई भी बीमारी है उसको सिर्फ सबसाइड करना हमारा काम नहीं है, उसकी जड़ तक पहुंचना, उसका जो मेन निदान है वो किस किस चीज से हुआ है, क्या
1: जी
0: कॉज है उसके,
1: जी जी
0: इससे उसे ठीक करना।
1: कारण को ढूंढकर उसके पूर्ण निदान करना आयुर्वेद का सिद्धांत है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने आयुर्वेद के सिद्धांत और इसके चिकित्सा पद्धति पर हमारे साथ साझा की। आयुर्वेद की पढ़ाई हम कैसे करें, क्या-क्या कोर्स होते हैं या क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक आयुर्वेद के विद्यार्थी को पढ़ने पड़ते हैं?
0: बेसिकली जैसे ही कोई भी स्टूडेंट BAMS बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो कि 5.5 साल का कोर्स है उसमें एनरोल करते हैं, तो हमें जो भी एलोपैथी का सिलेबस है, मॉडर्न मेडिसिन का सिलेबस है और जो आयुर्वेद का सिलेबस है वो सारा पढ़ना पड़ता है। भले ही कि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें 70% हमारा आयुर्वेद आता है और 30% मॉडर्न से पूछा जाता है, लेकिन हमें पढ़ाई दोनों की करनी पड़ती है, जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, सर्जरी है, IENT है, गायनेकोलॉजी है, तो उसका हमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी और मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी दोनों की जानकारी होनी आवश्यक है।
1: बिल्कुल। क्या सर्जरी भी इसमें पढ़ाई जाती है?
0: हाँ, सर्जरी भी पढ़ाई जाती है, मतलब सर्जरी पे काफी समय से डिबेट भी चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले 48 काइंड ऑफ सर्जरीज जो हैं आयुर्वेद में अलाउ की गई हैं। और अगर जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन आचार्य सुश्रुत जो हैं उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है।
1: बिल्कुल, सर्जरी पर भी आयुर्वेद में काम हो रहा है, या हम कह सकते हैं पहले से ही हो रहा है
0: हाँ,
1: और अभी और मॉडर्न तरीके से
0: हो
1: उसको
0: रहा
1: काम
0: है।
1: हो रहा है और इसकी भी पढ़ाई आयुर्वेद में बखूबी होती है। आपने ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई की बात की, पीजी लेवल में क्या कोर्स होते हैं?
0: ग्रेजुएशन, जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे मैंने पंचकर्म विषय से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है,
1: जी
0: वैसे ही आप शल्य से, शालाक्य से, मेडिसिन से मतलब काय चिकित्सा से, रोग निदान से, एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से, विभिन्न विषय हैं, पीडियाट्रिक्स से, ये सभी विषय हैं जिनसे आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं।
1: जी किसी एक विषय के विशेषज्ञ बन सकते हैं आयुर्वेद के चिकित्सा के माध्यम से भी। पढ़ाई की बात हो गई, अब जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करेगा तो उसे रोजगार के भी अवसर चाहिए। ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, लोगों की चिकित्सा तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने लिए धनोपार्जन भी करते हैं, अपने लिए भी रोजगार उत्पन्न करते हैं। तो क्या-क्या अवसर हैं रोजगार के? पढ़ाई करने के बाद हमें कितने प्रकार के रोजगार मिल सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
0: आपने बोला कि आयुर्वेद एक एक नोबल प्रोफेशन है, मतलब बेसिकली सभी डॉक्टर्स जो हैं उनका प्रोफेशन बहुत ही रिस्पेक्टेबल और नोबल होता है,
1: जी
0: लेकिन मैं पर्सनली अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद जो कि अथर्व वेद का एक अंग है, एक पार्ट है, वो पढ़ने का मुझे मौका मिला
1: जी
0: और जितने भी बच्चे इसे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अब आगे बात आती है कि ठीक है, प्रोफेशन तो चूज़ कर लिया, लेकिन आगे अब रोजगार क्या, मतलब आगे का क्या स्कोप है, इस चीज़
1: जी
0: के रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले जो भी बच्चे, मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, अब तो DM कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट विषयों में आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक कोई ड्रग्स हैं उन पे रिसर्च करके आप रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब जिस जैसे कि CCRS है उसके द्वारा हर बार डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स निकाली जाती हैं, तो वहां पे आप डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब तो आयुर्वेद का जो स्कोप है वो ग्लोबली भी है, जैसे कि साउथ कोरिया है, कनाडा है, US है और दुबई है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे, मतलब आजकल तो पूरा जो विश्व है वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है,
1: बिल्कुल, भारत की
0: तो
1: ओर देख रहा है आयुर्वेद के लिए।
0: हाँ,
1: जी
0: मतलब अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की मतलब बात आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी, वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी का जो आई रिलेटेड ऑपरेशन वगैरह था उसके लिए आयुर्वेद की मदद ली थी, और ऐसे ही काफ़ी जगह पे आयुर्वेद की मदद ली जा रही है। तो आयुर्वेद में और इसके अलावा जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हैं कि आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, आप
1: जी
0: ग्रेजुएशन कंप्लीट

0: रहे हैं, उसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिशनर के पास आप सीखने जाएं। मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है कि कुछ समय आप खुद को दें, आप सीखें, उसके बाद अपनी प्राइवेट
1: इंटर्नशिप भी कर सकते हैं।
0: इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप
1: जी
0: होता ही है, लेकिन
1: जी
0: आप पर्सनली भी क्लिनिक वगैरह पे सीखना अगर स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो
1: जी
0: आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के विषय में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो चीज़ ज़रूर करें। और अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप लेक्चररशिप में जाना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर एंड ऑल बनना चाहते हैं, तो वो भी फर्दर स्कोप है आपका। इसके मेजरली तो यही स्कोप्स हैं।
1: जी बिल्कुल। आयुर्वेद के साथ साथ हम देख रहे हैं कि योग के लिए भी भारत की ओर विदेश या पूरा विश्व ही देखता है, और योग तो हमारी पुरानी परंपरा है। तो आयुर्वेद और योग को मिलाकर भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी।
0: जो आपने बात की, तो आयुर्वेद और योग जो है, मतलब बिना योग के आयुर्वेद का नाम नहीं आता है, और आयुर्वेद के बिना बेसिकली योग, दोनों सिस्टर्स की तरह वर्क करती
1: अच्छा,
0: हैं।
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
0: हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मतलब बेसिकली जो स्वस्थ वृत्त नामक एक विषय है,
1: जी
0: मतलब जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं,
1: जी जी
0: उसमें योगा करके एक स्पेसिफिक हमें पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से योग आसन हैं, वो सारी चीज़ें पतंजलि योग के बारे में हमें बताया जाता है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज हैं, आप योग और आयुर्वेद को इंटीग्रेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, या फिर फर्दर आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड लेवल पे जाके उनके लेक्चर्स ले सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं।
1: जी
0: तो ये हैं।
1: जी बिल्कुल। तो काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। और योग और आयुर्वेद जब एक साथ आए तो जीवनचर्या बिल्कुल सुधर जाती है। और जैसा कि आपने बताया कि अगर हमारी जीवन शैली ठीक रहेगी, वात पित्त कफ बैलेंस में रहेंगे और योगासन का हम नियमित अभ्यास करते रहेंगे, तो रोग होने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। इस फील्ड में युवा आकर्षित हों, युवा आएं पढ़ें, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? आप क्या अपील करना चाहेंगी?
0: सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आयुर्वेद एक, जैसे कि मैंने बोला कि मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे वेद पढ़ने का मौका मिला। आप आयुर्वेद को नहीं, आयुर्वेद आपको चुनता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद पढ़ें और आगे बढ़ें।
1: आयुर्वेद पढ़ें और इस चिकित्सा पद्धति को अपनाकर आप लोगों का भी भला कर सकते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि डॉक्टर शालिनी कह रहे हैं, कि आप खुद भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे जब आप आयुर्वेद पढ़ेंगे और लोगों के साथ आप अपनी जानकारी साझा करेंगे, उनका कल्याण करेंगे, और साथ ही साथ हमारे देश और विश्व का भी कल्याण होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आयुर्वेद के विषय पर, इसकी भ्रांतियों को लेकर और इसके करियर अपॉर्चुनिटी संभावनाओं को लेकर डॉक्टर शालिनी झा ने हमारे श्रोताओं के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। उम्मीद है श्रोताओं आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। डॉक्टर शालिनी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आयुर्वेद जीवन रक्षा के साथ रोजगार भी। डॉक्टर शालिनी झा से इस विषय पर बातचीत कर रहे थे सचिन कुमार। कार्यक्रम उद्योग जगत संपन्न हुआ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे देशभक्ति गीत, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 1:30 हो रहे हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म से ये नगमा है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले को सुनिए। आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

द ग्रेट गैम्बलर में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, आर डी बर्मन का संगीत और अभिनी के संगीत में अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म अब्दुल्ला से सुनवा रहे हैं। सुनिए आनंद बख्शी की रचना।

आशा भोसले को आपने सुना फिल्म अब्दुल्ला में। आनंद बख्शी के बोलों को आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। और अब अगला गीत सुनिए फिल्म सनम तेरी कसम से। गुलशन बाबरा के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत आवाज दी है आर डी बर्मन ने।

सनम तेरी कसम फिल्म में भी आपने आर डी बर्मन को सुना, और अब आशा भोसले को सुनिए। गीत लिया है फिल्म अली बाबा 40 चोर से, आनंद बख्शी की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग करेंगे। श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने TMCH में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आरा के राजकीय पालिका विद्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच मतों की गिनती की जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रथम वरीयता में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका, जिसके बाद द्वितीय वरीयता की मतों की गिनती की जा रही है। इस सीट के लिए 12 मई को मतदान हुआ था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व MLC राधाचरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैक आउट मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉकड्रिल शाम 7 बजे से 7:15

0: तक आयोजित होगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। प्रशासन ने लोगों से मॉक ड्रिल में सहयोग की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तेल कंपनियां अब 10 लाख से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और SDF की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद तुहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। जनाब चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डा की हिफाजत सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को मुंतकिल किए जाने के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय तैयारा हादसा अथॉरिटी के अफसरान के साथ होने वाली मीटिंग में दरभंगा हवाई अड्डे को बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे की शक्ल में फ़रोग देने का मुतालबा करेंगे। जनाब चौधरी ने ज़िला के शोभन में एम्स के तामीराती काम की रफ़्तार का भी जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने DMCH में चल रहे काम की रफ़्तार के पेश नज़र भी अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। बिहार कानून साज काउंसिल की भोजपुर और बक्सर मकामी अथॉरिटी सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी है। हमारे नुमाइंदा ने बताया कि आरा के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वाक़ रायशुमारी मरकज़ पर सख्त हिफाजती इंतज़ाम के बीच वोटों की गिनती जारी है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक पहले मरहला में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ह अक्सरियत नहीं मिल सकी, जिसके बाद दूसरे मरहला के वोटों की गिनती की जा रही है। इस सीट के लिए 12 मई को वोटिंग हुई थी। गौरतलब है कि यह सीट साबिक रुकन कानून साज काउंसिल राधा चरण साह के कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद खाली हुई है। पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिलों में आज शहरी हिफाजती

मश्क के तहत ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का इनाकाद किया जाएगा। मॉक ड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक होगा। इस दौरान इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी प्राइवेट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इंतजामिया ने लोगों से मॉक ड्रिल में तआवुन की अपील की है। तेल कंपनियां रियासत में अब 10 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले सार्फिन को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस सिलसिले में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की जानिब से सार्फिन के रजिस्टर्ड मोबाइल पर यह पैगाम भेजा जा रहा है। बिहार रियासती LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक तेल कंपनियों की जानिब से भेजे जा रहे पैगाम में 7 दिनों के अंदर रद्द अमल मांगा गया है। अगर कोई सारिफ एतराज़ नहीं करता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने बैन अलावी उड़ानों की तादाद में कमी करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए बैन अलावी रास्तों पर कुछ खदमात गैरमुना तौर पर रोक दी गई है। ये फ़ैसला फ़जाई हदूद कंट्रोल और हवाई ईंधन के ऊंची कीमतों को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस साल जून से अगस्त तक के लिए होगी। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार समेत 7 ज़िलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मई माह में रियासत में अब तक मामूल से 170% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। मशरक़ी चंपारण ज़िला के छतौनी थाना हलका के बरियारपुर से ज़िला इंटेलिजेंस यूनिट और STF की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 असलाह स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर ज़िला के मोहम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का इंकशाफ किया है। मौके से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। शेखपुरा ज़िला के चेवारा थाना हलका से पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के ज़िला सदर मोहम्मद सफ़ी ईमान और उसके भाई को 3 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। अररिया सदर अस्पताल में शहरी सहूलतों को तौसी दी जाएगी। ज़िला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन की सदारत में मरीज़ फलाह कमेटी की मीटिंग में अस्पताल कैंपस में LED डिस्प्ले और कूलर वाले RO लगाने समेत कई दीगर तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.crpf.gov.in। जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स अथवा 2 या 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है 14 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.ssc.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है। ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष निर्धारित की गई है और ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। वेबसाइट का पता है www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री

0: एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नव नियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग

0: ये गए हैं अतुल बोरा, पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जागृत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रिड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉक्टर यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुँच गयी। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने

0: के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
1: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं,
1: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
1: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
1: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
1: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं, उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
1: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
1: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
1: जी
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो

0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।

0: सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
5: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
4: आजा खेलते हैं।
5: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
6: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
5: अच्छा वो क्या?
6: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
7: हाँ दूसरा क्या?
6: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
4: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।

0: बिल्कुल
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: और मुश्किल
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। हाँ।

0: कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
0: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
2: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
3: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
0: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
3: जी।
1: अच्छा।
2: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
4: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर

चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ये था प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल, आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आप

0: ने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, तो आज भी वजह बताइए
1: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना, तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
0: हाँ,
1: सेहत का ख्याल है या नहीं।
0: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना, वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
1: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
0: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही
1: हैं, जी बिल्कुल,
0: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
1: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है,
0: हाँ,
1: है ना।
0: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौंसी कोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लगकर बताएंगे।
1: जी बिल्कुल, और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किस्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं, तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज़ 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है, उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज़ आ सकती है। लेकिन हर चीज़ के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
1: बिल्कुल, तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज़ के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी हैं, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है, जहाँ पर हम KG1 KG2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
0: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और उनका सफ़र अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
0: भाई
1: है,
0: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरीबाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर
0: जी
1: पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है, जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीज़ों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लासिक हूँ, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा।
0: जी
1: जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो

0: बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली पहली महिला हैं जिन्होंने कागज़ और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं।

0: अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन ले,
1: चलिए।

0: पानी पता है कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सूनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी।
1: आपकी दोपहर कभी सूनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी।
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ, पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना ज़िंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारे सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
0: जी
1: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: हानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो

0: बिन तरपत पानी हो, जल बिन तरपत मछली जैसे, नल बिन तरपत पानी, अर्थात पानी बिना चलते
1: अशना।

0: सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वो ही होगा। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वही होगा।
1: ओए जम के एक जमा दूं

बिना ये जीवन

जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले तो

0: होती है, जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है।
1: बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा महेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं जी। वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयाँ जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं।

0: दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते,
1: सही बात है,
0: है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
1: वर्षगांठ
0: तो
1: है।
0: आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन सुनन सुना गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं, तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत
1: बिल्कुल
0: कीजिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते
1: मिल ही
0: हैं।
1: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूलते थे, नहीं बोल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
0: जी
1: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप ज़रूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर ख़रीदारी करना यानी कि कितना आसान EMIs पर किसी चीज़ को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है। अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल EMI और UPI का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि

0: रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैं फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना, अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है। उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है उतनी आमदनी आपको रखनी या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक पे चले
0: जाते हैं। और वो जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना जो एक प्रलोभन होता है उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज़्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में ख़रीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद ख़रीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं तो वही चीज़ें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफ़ी फिर ब्याज बढ़ने की उसमें महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है, फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किस्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण

0: कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: चलिए
1: दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल। और हम

0: हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
1: जी
0: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और

0: गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए। कॉफ़ी या चाय, इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने। इस
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी हैं कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते, इसलिए बदबू बढ़ाते हैं। और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
0: जी
1: पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है। टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं। नीम के पत्तों को उबालकर, नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको
0: जी
1: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप अब नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली

0: श्रोताओं नमस्कार। आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या और बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम उसको लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन। आओ मित्र, दो मिनट का मौन

0: रखें, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है भाई, आपकी तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं, और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए।
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की और आप

0: सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई, खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहंदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा से गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली हो, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। ये जो चिलमन है

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ
1: तो
0: बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ, तो इसीलिए रेडियो
0: अच्छा,
1: कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत ही अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में वो काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा,
1: मेरा माँ है, पापा है, तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, वो थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, तो
0: जी
1: हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर,
0: अच्छा,
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए। बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो
0: जी
1: डिगी के बारे में।
0: तो वहां पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आदमियों को दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हैरो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बांग्ली भाषा, तो
0: जी
1: बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है, तो
0: जी
1: बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी, नमस्कार
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ। बहन जी,
0: बताएं जरा अपने
1: बस
0: बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में
1: जी
0: आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जाते हैं। अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: जी, हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है,
0: हाँ
1: जैसे झांसी हमारे पास ही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है,
0: अच्छा
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम
1: नहीं,
0: मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये
1: जी
0: बता
1: जी
0: दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं।
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो, फरमाइश।
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विविध भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था, तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम। उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में।
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है। हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ। ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, अभी तो फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है, कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी है। यहाँ तक ले विदेशी पर्यटक भी तो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम। गाने का बोल है अलिफ जोहर आल, अलिफ जोहर आल, अलिफ जोहर ए, अलिफ तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अज बे जबर बा बे जर बे बे पेश बो अलिफ से अबन अब नबी हुर मन अबन अबौआ बे से बब

सेनापति पत होगा कोई दीवाना, होगा कोई दीवाना। हल्के बरा हल्के रे हल्के शो।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा। हमारी सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी इस सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं युवाणी के साथ। यह कार्यक्रम विशेषकर हमारे युवा श्रोताओं के लिए है, तो आइए सुनते हैं युववाणी।

0: हेलो, नमस्ते और गुड इवनिंग सभी श्रोताओं को। मैं हूँ स्मृति
1: और मैं हूँ सुनंदनी।
0: हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहाँ आपके लिए लाते हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और
1: ढेर सारे प्यारे प्यारे गाने। तो आज हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे सोशल मीडिया के बढ़ते फायदे और नुकसान के बारे में। फिर चर्चा करेंगे
0: अरुण चंद्र गुहा जी के जीवन और उनके बलिदान के बारे में।
1: फिर आपको ले चलेंगे फिल्मों की दुनिया में और चर्चा करेंगे वैजंती माला जी की फिल्मी करियर पर।
0: और जानेंगे फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के भी बारे में कि फेसबुक के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये गाना जिसे गाया है
0: सोनू निगम ने।

तो चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान के बारे में। आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और

0: यूट्यूब जैसे माध्यमों से जुड़ा है।
1: आज हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी किसी न किसी रूप से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। ये न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि शिक्षा, व्यापार और संचार का भी प्रभावशाली माध्यम बन गया है।
0: हालांकि सोशल मीडिया के अनेक लाभ हैं, वहीं इसके कुछ गंभीर नुकसान भी सामने आए हैं।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने लोगों के बीच संवाद को बहुत सरल और तेज बना दिया है। अब लोग कुछ ही सेकंड में अपना संदेश दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं।
0: विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षिक वीडियो, नोट्स और नई जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और सरल हो गई है।
1: बिल्कुल, देश दुनिया की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत मिल जाती हैं। लोग सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों से भी अपडेटेड रहते हैं।
0: सोशल मीडिया छोटे व्यापारियों से लेकर कंपनियों को अपने उत्पादों का प्रचार करने का रास्ता और प्रभावी मंच प्रदान करता है। इससे रोजगार में नए अवसर भी बढ़े हैं।
1: साथ ही साथ गाना, नृत्य, लेखन, अभिनय और चित्रकला जैसी प्रतिभाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान मिलती है। कई लोग तो अपने कला के कारण भी प्रसिद्ध हुए हैं और सोशल मीडिया ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
0: पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: वीडियो, गीत, फिल्में और हास्य सामग्री लोगों का मनोरंजन करती है तथा तनाव कम करने में भी मदद करती है।
0: और सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं। लोग घंटों मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, जैसे पढ़ाई और काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया की आदत कई लोगों को तनाव, चिंता और अकेलेपन की ओर ले जाती है। विशेषकर युवाओं में इसकी लत तेजी से बढ़ रही है। कई बार बिना सत्यापन के गलत जानकारी फैल जाती है, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो जाता है।
0: सोशल मीडिया पर साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी का गलत उपयोग होने की संभावना रहती है।
1: और तो और, फर्जी अकाउंट, ऑनलाइन ठगी, साइबर बुलिंग और हैकिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
0: और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों की कमजोरी, सर दर्द, नींद की कमी और शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं।
1: पता है सुनंदनी, लोग आजकल बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिटैच होते जा रहे हैं, कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप में, रिश्तों में बहुत सारी दूरियां आ जाती हैं।
0: सही कहा। और अनुचित सामग्री और हिंसात्मक वीडियो बच्चे जो देखते हैं, व्यवहार और सोच पर बुरा प्रभाव पड़ता है उनके।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है, जिसका उपयोग सही दिशा में किया जाए तो ये ज्ञान, विकास और सफलता का भी माध्यम बन सकता है।
0: लेकिन इसका अत्यधिक और गलत उपयोग व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए हमें सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित और सही ढंग से करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं, ये तो हमने जानी सोशल मीडिया के नुकसान और फायदे की बातें, तो अब चलिए थोड़ा सा गाना भी सुन लेते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में तो चलूं फिल्म बॉर्डर से। तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे पटना ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के बारे में। आज सुबह में आप सभी के फोन पर यह मैसेज तो जरूर आया होगा कि आज शाम करीबन 7 बजे के आसपास एक मॉक ड्रिल होने वाला है।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे भी मैसेज आया था। सरकार को मेरी भी थोड़ी चिंता है।
0: बिल्कुल, आज हम बात करेंगे इसी मॉक ड्रिल के बारे में, जिसने पिछले कुछ दिनों से शहर में काफी चर्चा और थोड़ी दहशत पैदा कर दी है। सुनंदिनी, जब प्रशासन ने यह घोषणा की कि पूरे पटना में कुछ मिनटों के लिए बिजली, इंटरनेट और संचार सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी ताकि आपदा की स्थिति का पूर्वाभ्यास किया जा सके, तो जनता की पहली प्रतिक्रिया पैनिक होगी, है ना? क्या यह मॉक ड्रिल वाकई इतनी जरूरी है?
1: हाँ बिल्कुल जरूरी है स्मृति। देखिए, पैनिक होना स्वाभाविक है क्योंकि हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जो बिना बिजली और वाईफाई के 10 मिनट भी नहीं रह सकते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: पटना जैसे घनी आबादी वाले शहर में, जहाँ गंगा का जल स्तर बढ़ता या भूकंप की आशंका हमेशा रहती है, एक ऐसे ग्रिड फेलियर या फिर साइबर अटैक की स्थिति में पूरा शहर अपाहिज हो सकता है। यह मॉक ड्रिल यह जांचने के लिए है कि अगर कल वाकई जीरो संचार की स्थिति आई तो हमें अस्पताल, पुलिस और फायर ब्रिगेड को कैसे बुला सकते हैं हम लोग उनको।
0: बिल्कुल, तो इस मॉक ड्रिल में जरूर शामिल हों, अपना पूर्णतः सहयोग दें और देश के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। तो चलिए श्रोताओं, अब बारी आई है एक अच्छे से गाने की, तो सुनते हैं ये गाना।

0: अभी हम सुन रहे थे श्रोताओं, अदनान धूल की आवाज़ में फिल्म एक विलेन से ये ट्रैक। अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर जिनके लिए, जिनका नाम शायद आज की इंस्टेंट पीढ़ी के लिए नया हो, लेकिन जिनका योगदान आधुनिक भारत की नींव की ईंटों की तरह है। आज हम बात कर रहे हैं अरुण चंद्र गुहा जी की। सुनंदिनी, जब हम गुहा जी के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसा चित्र उभरता है जिसने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे बिताया और फिर संसद के गलियारों में देश की नियति लिखी। उनकी जयंती पर चर्चा की शुरुआत आप कैसे करेंगी?
1: स्मृति, अरुण चंद्र गुहा केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संस्था थे। 14 मई उनकी जयंती का दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी केवल अहिंसा आंदोलन का परिणाम नहीं थी बल्कि उन युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों की तपस्या भी थी जिससे गुहा जी जुड़े थे। वे एक क्रांतिकारी दार्शनिक थे। अक्सर लोग क्रांतिकारियों को केवल बम और पिस्तौलों से जोड़ते हैं, लेकिन गुहा जी ने दिखाया कि एक क्रांतिकारी के पास एक सशक्त कलम और एक दूरदर्शी राजनीतिक सोच भी हो सकती है।
0: आपने युगांतर दल का जिक्र किया है। वह दौर बंगाल की धरती पर राष्ट्रवाद के उफान का था। गुहा जी का प्रारंभिक जीवन और उनका क्रांतिकारी सफर कितना चुनौतीपूर्ण था?
1: स्मृति, बात करें तो गुहा जी का जन्म 1892 में हुआ था। उस कालखंड में हुआ था जब बंगाल विभाजन 1905 ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। वे बहुत कम उम्र में युगांतर दल में शामिल

0: हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 साल ब्रिटिश जेलों में बिताया है। यह कोई छोटी अवधि नहीं है। वर्मा की मांडले जेल से लेकर भारत की कुख्यात जेलों तक उन्होंने यही वे उनके अडिस्ट राष्ट्रवाद का परिणाम हुआ।
1: 24 साल जेल, आज के दौर में जब लोग 2 दिन का इंटरनेट ब्लैकआउट नहीं झेल सकते हैं, वहां 24 साल का एकांत और प्रताड़ना, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन गुहा जी की विशेषता ये थी कि जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और अधिक परिपक्व बनाया। वहीं उन्होंने साहित्य और इतिहास का गहन अध्ययन भी किया। आज़ादी के बाद कई क्रांतिकारी मुख्य धारा की राजनीति से अलग हो गए, लेकिन अरुण चंद्र गुहा ने संसदीय लोकतंत्र को चुना। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। एक क्रांतिकारी का सांसद बनना, यह वैचारिक बदलाव कैसे हुआ?
0: यह बदलाव परिवर्तन नहीं बल्कि विस्तार था। गुहा जी का मानना था कि जो क्रांति बंदूकों से शुरू हुई थी, उसे अब नीतियों से यानी पॉलिसीज के माध्यम से पूरा करना होगा। वे नेहरू जी के सामने समय उनके समय में ही वित्त राज्य मंत्री भी रहे। संसद में उनकी भूमिका एक प्रहरी की जैसी थी। वे एस्टीमेट कमेटी में भी थे, अध्यक्ष रहे और उन्होंने सरकारी खर्चा और जवाबदेही पर भी जो कम हो सकता था कम किया गया था, उसे आज भी संसदीय मानकों में मिसाल माना जाता है।
1: एक पूर्व क्रांतिकारी का वित्त मंत्रालय संभालना और सरकारी खजाने की शुचिता पर ध्यान देना, ये दर्शाता है कि उनके लिए आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी भारत भी बनाना था। तो श्रोताओं, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आइए सुनाते हैं आपको एक गाना।

0: आज हमारे स्टूडियो में अब हम ऐसी एक शख्सियत की चर्चा करेंगे जिसने न केवल कमरे के पीछे से दुनिया देखी, कैमरे के पीछे से दुनिया देखी, बल्कि उस कैमरे को एक हथियार बना दिया। आज महान फिल्मकार मृणाल सेन की जयंती है। सुनंदिनी, जब भी मृणाल सेन का नाम आता है तो भारतीय सिनेमा के उस न्यू वेव की याद आती है जिसने बॉलीवुड को चकाचौंध कर दिया था। आपकी पहली स्मृति उनके सिनेमा से है क्या?
1: स्मृति, मृणाल दा के बारे में बात करना बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। दरअसल उस भारत के बारे में है बात करते हैं जो आज़ादी के बाद अपनी पहचान तलाश रहा था। मेरी पहली स्मृति उनकी फिल्म भुवन शोम, जो कि 1969 से जुड़ी है। उस फिल्म में जब एक सख्त मिजाज अफसर गुजरात के खुले मैदान में एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता था, तो वह भारतीय सिनेमा की आज़ादी का क्षण था। मृणाल सेन केवल फिल्में नहीं बनाते थे, वे दर्शकों को दरअसल अनकंफर्टेबल करते थे। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एक्ट भी है।
0: बिल्कुल, ये माना जाता है कि सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन, इन तीनों को भारतीय सिनेमा की त्रिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन मृणाल सेन इन दोनों से अलग कैसे थे, आइए जानते हैं। मृणाल सेन जहां क्लासिक और संतुलित थे, घटक जहां विस्थापन के दर्द में डूबे थे, वहीं मृणाल दा का सिनेमा बहुत

0: अधिक प्रायोगिक और विद्रोही ज्ञान पड़ता था।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। मृणाल सेन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन एक रचनात्मक अर्थ में वे बर्टोल्ट ब्रंच के प्रशंसक थे। वे अक्सर फोर्थ वॉल तोड़ देते थे, यानी उसके उनके पात्र अचानक कैमरे की तरफ देखकर दर्शकों से बात करने लगते थे। वे दर्शकों को यह भूलने नहीं देते थे कि वे एक फिल्म देख रहे हैं। वे चाहते थे कि आप फिल्म खत्म होने के बाद केवल तालियां ना बजाएं, बल्कि घर जाकर सोचें कि आप आपके आसपास की गरीबी और व्यवस्था के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है उसके प्रति।
0: बिल्कुल, उनकी सिनेमा, उनकी मूवीज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि वो लोगों को झकझोर देते थे सोचने के लिए, बहुत ज़्यादा थिंक करने के लिए उस विषय पर कि क्या सचमुच हम जागरूक हैं, क्या हम सचमुच अपने आसपास अपने जो देश को देख रहे हैं, क्या हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं बताते चलूँ आपको श्रोताओं कि उनकी कलकत्ता ट्रिलॉजी इंटरव्यू जो थी, जो दो कलकत्ता ट्रिलॉजी तो जैसे बंगाल के छात्र आंदोलनों और राजनैतिक उथल-पुथल के पर्दों पर उतार दिया था। स्टूडियो में बैठकर आज जब हम उन फिल्मों पर बात करते हैं तो वे आज के दौर में कितनी प्रासंगिक लगती हैं।
1: हाँ, वे आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि कलकत्ता 71 में उन्होंने गरीबी को केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली हिंसा यानी वॉयलेंस के रूप में दिखाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे दशकों बीत जाने के बाद भी लेकिन एक आम आदमी की भूख और उसका संघर्ष नहीं बदलता। उनकी फिल्में अवंत गोर्ड यानी अवंट गार्ड थी। उन्होंने सेट पर नहीं बल्कि कलकत्ता की सड़कों पर असली भीड़ के बीच फिल्में बनाई। वे एक गुरिल्ला थे, फिल्मकार थे, जिसे एक गुरिल्ला फिल्मकार भी कहा जा सकता है।
0: मृणाल दा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सम्मान मिला। कांस, बर्लिन और वेनिस फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी धूम रही। लेकिन उनकी फिल्म खंडहर या एक दिन प्रतिदिन में जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वे उनकी राजनैतिक फिल्मों से थोड़ी अलग दिखती हैं।
1: स्मृति, मृणाल सेन का कैनवस बहुत बड़ा था। खंडहर में उन्होंने अकेलापन और यादों के मलबे को जिस तरह से दिखाया वह बेमिसाल है।
0: नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के अभिनय से सजी वह फिल्म बताती है कि मृणाल दा केवल नारों के फिल्मकार नहीं थे, वे मानवीय रिश्तों की महीन परतों को भी जानते थे। एक दिन प्रतिदिन में एक कामकाजी महिला को रात घर न लौटने पर मध्यम वर्गीय परिवार का जो पाखंड बाहर आता है, वो आज भी हमारे समाज का सच है। आज जब सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों के क्लब में सिमट गया है, तो क्या हम मृणाल सेन जैसे फिल्मकारों की कमी महसूस नहीं होती, जो बिना किसी बड़े बजट के केवल एक मजबूत विचार के दम पर पूरी दुनिया को हिला देते थे?
1: बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आज के सिनेमा तकनीक में तो अमीर हुए हैं, लेकिन दृष्टि यानी विजन में गरीब हो गए हैं। मृणाल दा कहते थे, मैं अपनी फिल्मों से दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन मैं लोगों की सोचने की सोच लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ। आज हमें ऐसे फिल्मकारों की ज़रूरत है जो सत्ता से सवाल पूछ सकें और समाज के हसीये पर खड़े उतर सके। उनकी जयंती पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सिनेमा को केवल आर्ट हाउस ना समझें, उनको बल्कि उसे सवाल पूछें कि कला क्या है, कला सीखें। उनकी फिल्मों से हमें सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल, मृणाल सेन ने अपनी आत्मकथा का नाम ऑलवेज बीइंग बॉर्न रखा था। यह शीर्षक उनके व्यक्तित्व को बखूबी बयां करता है। वे अंत तक कुछ नया सीखने और रचने के लिए उत्सुक रहते थे।
1: बिल्कुल, वे कभी पुराने नहीं हुए। उनकी फिल्में हमें सिखाती हैं कि एक कलाकार को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनकी जयंती पर हम यही कह सकते हैं कि मृणाल दा का कैमरा कभी बंद नहीं हुआ है। वह आज भी उस हर आंखों में है, जिंदा है, जो कि नासफाई के खिलाफ सवाल उठाती है।
0: इस चर्चा ने मृणाल दा के सिनेमा को फिर से

जीवंत कर दिया। उम्मीद है हमारे सुनने वाले भी आज उनकी कई एक फिल्में शायद याद करेंगे। तो श्रोताओं, बातें होती रहेंगी, आइए सुनाते हैं आपको ये गाना।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुसाफिर जाने वाले उदित नारायण की आवाज में फिल्म गदर से। अब हम बात करते हैं वैजयंती माला जी के बारे में। वैजयंती माला भारतीय सिनेमा की उन महान अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपने अभिनय, नृत्य कला और सौम्य व्यक्तित्व से लाखों लोगों के दिल में विशेष स्थान बनाया है।
4: उनकी जयंती के अवसर पर लोग उन्हें केवल एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और कला की प्रतिनिधि के रूप में भी याद करते हैं।
3: वैजयंती माला जी का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक, अनुशासित और गरिमामय था। वे एक कुशल भरतनाट्यम नृत्यांगना थी और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को कई फिल्मों में नई पहचान दिलाई।
4: उनकी मुस्कान, भाव और अभिनय ने गहराई दर्शकों को बहुत प्रभावित करती थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अभिनय और नृत्य दोनों ही रूप में निपुण थी।
3: वह अपनी मेहनत, सादगी और भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए जानी जाती थी। वैजयंती माला जी ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में प्रवेश किया और शीघ्र ही हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं।
4: उन्होंने 1950 और 1960 के दशकों में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उस दौर में उनकी जोड़ी कई बड़े अभिनेताओं के साथ खूब पसंद की गई।
3: उनकी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ नृत्य भी विशेष आकर्षण होता था। वे उन अभिनेत्रियों में थीं जिन्होंने नायिका के किरदार को अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाया।
4: वैजयंती माला जी को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय सिनेमा को कला और शालीनता और उत्कृष्ट अभिनय का नया स्तर दिया।
3: बिल्कुल, उनके नृत्य ने फिल्मों को सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की और उनके अभिनय ने उनके किरदारों को और अमर बना दिया।
4: वे केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की पहचान थी। उनकी फिल्में और गीत आज भी पुराने सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं।
3: उनकी एक फिल्म का एक गाना था, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ये गाना मैं जब भी सुनती थी मुझे बड़ा मज़ा आता था। और उनकी कई ऐसी फिल्में थीं जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान और मतलब क्या बताऊँ मैं, मुझे हमें सब हम सबको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती थी। अब जैसे उनकी एक फिल्म थी नया दौर, है ना, उसका जो एक गाना था, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। तो आइए हमारे दर्शकों को, सॉरी हमारे श्रोताओं को ज़रूर ये गाना सुनाते हैं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, गाना

0: आइए श्रोताओं, अब बात करते हैं मार्क जगरबर्ग की। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टेक उद्यमियों में से एक है वो। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, पहले फेसबुक के सह संस्थापक और सीईओ हैं।
1: उनका जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में बहुत रुचि थी।
0: उन्होंने कम उम्र में ही कई छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स और मैसेजिंग प्रोग्राम्स बना लिए थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन फेसबुक पर पूरा ध्यान देने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी।
1: साल 2004 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बनाया।
0: शुरुआत में यह केवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया।
1: आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म मेटा कंपनी के अंतर्गत आते हैं।
0: अब आपको बताते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। मार्क जकरबर्ग ने 12 वर्ष की उम्र में जकनेट नामक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया था। उन्हें कई भाषाएं सीखने का शौक है। वे दान और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं।
1: आज उनको दुनिया सोशल मीडिया और आधुनिक डिजिटल संचार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से गिना जाता है।
0: बिल्कुल, अगर आज हम फेसबुक यूज कर रहे हैं तो सिर्फ जकरबर्ग की वजह से। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं ये गाना हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल की आवाज में, तेरा मेरा मिलना।

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में ठीक इसी समय। तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए मैथिल कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आजुक कार्यक्रम में हम सब गीत नादक आनंद लेब। गीत नाद सुनौता आशुतोष कुमार मिश्र संगे सुनब एक गोट वार्ता, विखे होयत आवश्यक अछि जीवन में अनुशासन। ई वार्ता सुनौती मीरा कुमारी, मुदा ओहि सबसँ पूर्व किछु अपना में गप सप सेहो करब। देखू श्रोता मित्र, परिवार में प्रेम आ सौहार्द सबहक खुशहाल जिंदगीक नींव होइत अछि। एहन घर जाहिठाम घरक सब सदस्य एक दोसर के प्रेम आ सम्मान दैत होइत, एक संग खुशी बाँटैत होइत, एक दोसराक दुखक सहारा बनैत छथि, ओ घर कोनो स्वर्ग सँ कम नहि होइत अछि। प्रेम आ सौहार्द लेल नहि मात्रे एक दोसर संग किम्बा हुनक गप आ समस्या सेहो सुनऽ पड़ैत छैक, सङ्गहि ओहि समस्याके समाधानमे पूर्ण मदति सेहो होय एहन अपेक्षा होइत छैक। अपन भावना आ चिन्ता खुलि कऽ रखलासँ कोनो प्रकारक मतभेद दूर होइत अछि। तहिना कोनो विषयपर परिवारक सदस्यके भिन्न विचारके सेहो सम्मान होयबाक चाही, हुनक निजताके रक्षा करी, कोनो सदस्यक छोट छोट प्रयासके सेहो सम्मान करी आ हुनका प्रोत्साहित सेहो करी। एहिसँ नहि मात्र परिवार सङ्गहि ओ व्यक्ति सेहो अहाँ लेल सदिखन तत्पर रहताह। श्रोता मित्र, घरक काजके मील बाँटि कऽ करी, जाहिसँ किनको एक गोटेपर बोझ नहि पड़नि। छोट छोट गपके मुद्दा नहि बनाबी आ एहिके मनमे सेहो सदिखनके लेल नहि पालि कऽ राखी। जँ गलती कयने छी तऽ ओकरा स्वीकार करी, माफी माँगि ली। एहिसँ छोट आ पैघ केओ नहि होइत छैक। घरमे अपन व्यवहार सभक सङ्ग प्रेमवत राखी, सभक सङ्ग सकारात्मक व्यवहार बना कऽ राखी। घरक माहौलके हँसी ठिठोलीवला राखब उत्तम होइत छैक। एहनमे किनको कोनो गप कहबामे संकोच नहि होइत छैक, जाहिसँ मोनक कोनो एहन गप होयत तऽ ओ निकलि जायत। श्रोता मित्र, परिवार प्रेम आ सहयोगसँ बनैत छैक, नहि कि मात्र एकठाम रहलासँ। तऽ प्रेम बाँटी आ सभक खुशीमे सहभागी होइ तऽ हम सभमे एहिसँ सद्भाव आनि सकब। एक गोट नीक परिवार प्रेम सङ्गे एक दोसरके मार्गदर्शन सेहो करैत छैक। आउ हमसभ ई छोट छोट गप

अपना परिवार में अपना एकरा स्वर्ग जका बनाबी। ई तऽ छल किछु अपना में दुटप्पी। आओ कार्यक्रमक आंगन में अखन प्रवेश करैत छी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबैत छी ई विद्यापति गीत। कलाकार छथि आशुतोष कुमार मिश्र। सुनल जाए।

आशुतोष कुमार मिश्र कर स्वर में हिनका धन्यवाद दियन। कार्यक्रम में हिनका सो आर हम सब गीत नादक आनंद लेब। एखन हम सब आगू बढ़ी ओहिसँ पूर्व एकटा छोट संदेश सुनि लैत छी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: एक बार फिर से समस्त श्रोता के भारतीय कार्यक्रम में स्वागत। आओ एखन कार्यक्रम में हम सब आगू बढ़ैत, अपने सबके सुनबैत छी ई वार्ता। विषय अछि आवश्यक अछि जीवन में अनुशासन। वार्ताकार छथि मीरा कुमारी। ताओ सुनल जा एहि संदर्भ में हिनक विचार।
4: अनुशासन दू शब्दक मेल सँ बनल अछि, अनु और शासन। अनु उपसर्ग अछि जे शासन शब्द में जुड़ि कऽ अनुशासन बनल, जेकर अर्थ होइत अछि कि कोनो नियम के अधीन भऽ कऽ नियमक शासन में रहब। हमरा सबके जीवन में प्रत्येक काजक लेल अनुशासित हुअब अत्यंत आवश्यक अछि। मानवे नहि, सृष्टि के कण कण अनुशासनक मर्यादा सँ बंधल अछि। सब अपना निर्धारित नियम के पालन सेहो करैत अछि। शरीर के सब अंग प्रत्यंग सुचारू रूप सँ क्रियाशील होइत अछि, जाहि सँ शरीर स्वस्थ रहैत छै। हम तखने तक स्वस्थ छी जखन तक हमर शरीरक सब अंग अपन बनल नियमक अनुसार काज करैत अछि। अगर हृदय गुर्दा काज करऽ लागत आ यकृत मस्तिष्क के काज करेबा पर उतारू भऽ जायत तऽ व्यतिक्रम एवं विकार उत्पन्न हुअ लागत। ई कखनो नहि संभव अछि, मुदा खाली सोचला सँ घोर अव्यवस्था देखबाक भेटत। आखिर हृदय मस्तिष्क गुर्दा आ यकृत सबके अपन स्वतंत्रता अछि। वो चाहत तऽ अलग अलग तरीका सँ क्रियाकलाप कऽ सकैत अछि, मुदा ओ नहि करत। ओ अपन विधानक मुताबिक तय कयल गेल नियम पर ही पूरा जीवन चलत। भले ही थाकि कऽ अपन काज केनाय बंद कऽ सकैत अछि, मुदा अपन नियम एवं मर्यादा के कखनो नहि छोड़त। ई शारीरिक अनुशासन अछि। अनुशासन यानि एक महान व्यवस्था जेकरा शरीर स्वयं के स्वस्थ रखबाक लेल बनेने अछि। एहि अनुशासन ईश्वर के रचल ब्रह्मांड में सेहो देखबाक भेटैत अछि। चंद्रमा अपन नियत गति सँ पृथ्वी के और पृथ्वी सूर्य के चक्कर एक निश्चित दूरी बना कऽ एक दोसर के लगबैत अछि। सौर मंडल में एकर अलावा अनेकानेक ग्रह तारा अछि, वो सब भी प्रकृति के नियम में स्वयं के बांधने छैक। एहि में से कोनो प्रकृति के नियम के उल्लंघन नहीं करैत अछि आ नहि केओ केकरो निर्देश दैत छैक, किएक नहि वो अपन स्वतंत्रताक अधिकार के उपयोग करैत अछि। वो एहन नहि करता, नहि सोचता, किएक तऽ एहि केला सँ समस्त ब्रह्मांडक लेल विनाशकारी होइत। ओहिना प्रकृति से बंधल सब घटक सँ अनुशासन बंधल अछि। एकरे अनुसार कार्य व्यवहार करब मंत्र अछि। प्रकृति के सूर्य चंद्रमा दिन राति मौसम नदी पवन प्रतिदिन अनुशासन में रहबाक शिक्षा दऽ रहल अछि। आब चाही हम अनुशासन में रहू या पश्चाताप करू, ई स्वयं पर निर्भर अछि। आइ तक जतेक महापुरुष भेला वो सब अनुशासनक राह पर चलला, अनुशासित जीवन व्यतीत केला। अनुशासित व्यक्ति ही समाज आ जीवन में सम्मान पाबैत छथि। अनुशासन हमरा सबके समय के कदर करेबाक सिखाबैत अछि, जे कि लक्ष्य प्राप्ति आ राष्ट्र निर्माण व विकास में सहायक होइत छैक। ई सफलता कुंजी अछि। जीवन के कोनो क्षेत्र में सबसँ अनुशासित व्यक्ति ही सबसँ बेसी सफल भेला। हमरा सबके जीवन में प्रत्येक काजक लेल अनुशासित हुअब अति आवश्यक अछि। ई कटु सत्य थिक कि अनुशासनक बिना सफलता भेटब कठिन अछि। जाहि देशक लोग अनुशासित छथि, सेना अनुशासित छथि,

0: ओ देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होइत रहत, ओ सब क्षेत्र में आगू बढ़ल जाइत। अनुशासन जीवन में सफलताक सीढ़ी अछि, जकरा सहारे हम कोनो मंजिल के प्राप्त कऽ सकै छी। अनुशासनक बीजारोपण बचपन सँ लगेबाक चाही, खास करके विद्यार्थीक जीवन में। छोट छिन बच्चा के ई बुझब नहि आबै छै कि सही की अछि आ गलत, वो किनको बात नहि सुनै छथि, मुदा ई सब गलत अछि। एक अनुशासन में बच्चा कोना रहत, ई माता पिता के ध्यान रखेबाक होइतनि। बच्चा सवेरे उठकर अपन दैनिक क्रिया सँ निवृत्त भऽ कऽ इसकुल जाइत, ओतऽ शिक्षक के बात मानैत, कक्षा में शोर नहि करैत, पढ़ाई पर ध्यान दैत, शिक्षक सम्मान करी, हुनक द्वारा पढ़ायल पाठ के याद करैत, अपन कक्षा के अनुशासन में राखैत, प्रत्येक सहपाठी सँ मेल मिलाप एवं सहयोगक भावना राखैत, माता पिता एवं अपना सँ पैघ के आदर सम्मान करैत, हिनक द्वारा कहल गेल बात पर चलैत, समय सँ उठि कऽ स्वयं तैयार भऽ कऽ इसकुल जाइत, ओतऽ कक्षा सँ लऽ कऽ खेलक मैदान तक अनुशासनक पालन करैत, जेनाकि खेल मे जितेबाक लेल गलत व्यवहार नहि करैत, खेल के नियम के पालन करैत। आई जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे स्पर्धाक दौड़ अछि, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र होइत, खेल के क्षेत्र होइत, संगीत के होइत, प्रत्येक क्षेत्र मे स्पर्धा विद्यमान अछि। सब व्यक्ति आजीविकाक लेल बढ़िया क्षेत्र चाहै छथि, ई हम तखने पाबि सकै छी जखन कि हम अनुशासनक नियम मे बांधि कऽ तैयारी करब। अनुशासन मनुखक जीवन के समस्त गतिविधि कार्यशैली सँ होइत हमर व्यवहार, रहन सहन आ व्यक्तित्व के प्रदर्शित करैत अछि। ई मानव जीवन के कुशलतापूर्वक जियबाक लेल महत्वपूर्ण अछि आ हमर कर्तव्य बनैत अछि कि स्वयं अनुशासन पालन करू आ दोसर के भी सिखेबाक लेल प्रयत्न करू। एक अनुशासित जीवन व्यतीत करय वाला व्यक्ति ही जीवन के आनंद लैत अछि। विकासक क्षेत्र में अनुशासन एक महत्वपूर्ण विषय अछि। ई मानवीय संसाधन के मूल तत्व अछि, जे व्यक्ति के स्वयं स्वनियंत्रण करब, समय प्रबंधन करब, लक्ष्य के प्राप्ति के लेल कर्मठता आ संगठनशीलता के विकसित करबा में मदद करैत अछि। दृढ़ता आ समर्पण के भावना के बढ़बै छै। एकरा बिना मनुखक प्रगति पर प्रतिबंध लग सकैत अछि। समय प्रबंधन में अनुशासन समय के महत्व के शिक्षा दैत अछि, समय पर काज करेबाक आ नीक तरीका सँ प्रतिबंधित करेबाक सीख दैत अछि, जे बाद में चलि कऽ सफलताक प्राप्ति में सहायक सिद्ध होइत अछि। सामाजिक जीवन में समरसता में अनुशासन ओतबे आवश्यक अछि जतेक व्यक्तिगत जीवन में। एहि सँ स्वास्थ्य आ जीवन शैली में सुधार, नियमित दिनचर्या, व्यायाम आ खानपान में अनुशासन स्वास्थ्य बनेबा में मदद करैत अछि। ई शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के सुदृढ़ रखैत अछि। अनुशासन सँ कार्य क्षमता बढ़ैत अछि, एहि सँ टीम वर्क के क्षमता में बढ़ोतरी होइत अछि आ व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति आत्मनिर्भर बनैत अछि। व्यवहार में अनुशासनक पालन सँ सलीका सँ बात करेबाक कला दैत अछि, अपना सँ पैघक कहल बात पर अमल करेबाक सिखाबैत अछि। जे व्यक्ति अनुशासित जीवन नहि जीवैत छथि, हुनका समय पर कोनो काज सफल नहि होइत छनि आ हुनक सम्पूर्ण जीवन अव्यवस्थित आ निराशाजनक भऽ जाइत छनि, वो बाद मे पछतावा करैत छथि। अतएव अपन जीवन शैली के अनुशासित रखेबाक चाही, जाहिसँ जीवन में सफलता के संग संग संतोष आ शांति भेटत।
1: एखन सुनि रहल छलहुँ श्रोता मित्र ई वार्ता, विषय छल आवश्यक अछि जीवन में अनुशासन। वार्ताकार छलीह मीरा कुमारी, हिनका धन्यवाद दियनि। कार्यक्रम में अखन सुनै छी ई झूमर आशुतोष कुमार मिश्रा के स्वर में।

सुमधुर सन झूमर सुना रहल छला आशुतोष कुमार मिश्र, निश्चिते ही नीक लागल हैत से अपेक्षा अछि। श्रोता मित्र, वायु प्रदूषण आजुक समय के सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या में से एक भऽ गेल अछि आ एहि के असर मनुख, पशु पक्षी, पर्यावरण सब पर देखबा में आबि रहल अछि। मनुख के श्वास, हृदय संबंधी विविध रोग अपन चपेट में लऽ रहल अछि। कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, कारखाना आदि सँ निकलल जहरीला धुआं हमरा सबके सबसे बेसी प्रभावित कऽ रहल अछि। तहिना खेत में पुआर के जरेला सँ गाम सँ शहर धरि प्रदूषण बढ़ि रहल अछि। विभिन्न पैघ निर्माण सँ सेहो भारी मात्रा में प्रदूषण निकलि रहल छैक। एहिसँ बचबाक लेल ठोस आ गंभीर प्रयास सेहो करबाक जरूरत अछि। एहिसँ बचबाक लेल सार्वजनिक वाहन के उपयोग हमरा सब

के लेल बड़ जरूरी अछि। मेट्रो, बस, ट्रेन जेहन सार्वजनिक साधन के उपयोग उत्तम होयत। पौधरोपण बेसी से बेसी करी, ई जीवन बढ़ाओत, संगहे हवा के सेहो स्वच्छ बनाबैत अछि, गंदगी के खत्म करैत अछि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उपयोग बेसी से बेसी करी, बिजली के बचत करी। किछु एहन हमसब छोट छोट डेग उठायब तऽ वायु प्रदूषण निश्चित रूप से कम होयत। कार्यक्रम के समापन से पूर्व एखन अपने सबके सुनबै छी ई एगोट आर झूमर।

श्रोता मित्र, एखन औल अपन चरम पर अछि। एहनमे हमरा सबके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देबाक जरूरत अछि। एहि प्रचंड रौदमे स्वयं आ परिवार के बचेबाक लेल सब सदस्य के रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानि के सेवन आवश्यक अछि। पानि पीबाक लेल पियासक इंतजार नहि करी आ किछु काल पर एकर सेवन करैत रही। संगहि नारियल पानि, छाछ, लस्सी बड्ड फायदा करत। तेज रौद में नहीं निकली, शरीर में हल्का सूती कपड़ा पहिरी, चाह कॉफी से बची आ हल्का आ सुपाच्य भोजन करी। खीरा, ककड़ी, तरबूज के सेवन उपयुक्त होयत। किछु एहन हम सब अपना कऽ, अपन व्यवहार अपना कऽ, अपन व्यवस्था बना कऽ निश्चित रूपेण स्वस्थ रहि सकैत छी। कार्यक्रम में आर गपशप करबाक मन छल, मुदा आब समय अनुमति नहि दऽ रहल अछि। पुनः अगला कार्यक्रम में अपने सबसे भेंट होयत। आजुक भारतीय कार्यक्रम से प्रभात के विदा देल जाय। बेस तऽ, शुभ साँझ।

अभी से कुछ ही देर के बाद हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल।

अभी आप सुन रहे थे महफिल कार्यक्रम भारती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दिए।

बातों बातों में यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 8:15 पर समाचार हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में आप सुन पाएंगे। रात्रि 8:45 से प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

श्रोताओं, ये जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे फिल्म संगीत का।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक के। फिल्माया गया था रवीना टंडन और गोविंदा पर। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चाइना गेट से सपना अवस्थी और अनु मलिक की आवाज़ें।

ये गीत आप सुन रहे हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में बाजीराव मस्तानी से। इसके साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार मीनू बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन। तब बताएं क्या हाल समाचार बाटे।
2: हाल चाल का क्या कहें, जिस तरीके से इस गर्मी के मौसम में बार बार मौसम का मिजाज जो बदल रहा है ना, तो कभी गर्मी तो कभी ठंड जैसा ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में बस यही रहता है कि घर परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे, किसी
1: देखिए,
2: तरीके की बीमारी ना हो।
1: हाँ देखिए, आंगन में जब हमने दो गो महिला बैठल बनी, मतलब नारी बैठल बनी, तो नारी है शक्ति और नारी है सम्मान। तो अंगना में जब बैठल बानी तो काहे ना आज आंगन में नारी महिला से जुड़ल कुछ गपशप हमनी के कर लेवल
2: बिल्कुल,
1: जाओ।
2: जैसे महिलाओं का जो दायित्व होता है अपने घर परिवार को लेकर के, वो किसी भी मौसम की बात हो, कोई भी बात हो, जो पहली प्राथमिकता महिलाएं जो देती हैं, हम महिलाएं जो देते हैं, जो घर गृहस्थी वाले हैं, वो अपने घर परिवार के लोगों को देते हैं और बाद में अपनी।
1: देखिए, महिला तो परिवार के रीढ़ होखेली, वो घर होखे, बच्चा होखे, परिवार होखे और समाज के जिम्मेवारी निभाते निभाते अक्सर ही भूल जाएली कि तनी अपना खातिर भी समय निकाल ली, थोड़ा अपना ऊपर भी ध्यान दे दही, आपन सेहत के ख्याल रख ली, थोड़ा अपना खातिर भी समय निकाल ली।
2: ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ठीक है आप नजरअंदाज करते हैं, इसका असर एक उम्र पर आने पर पता चलता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है अपने स्वास्थ्य के बारे में। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी
1: तब
2: आप
1: परिवार भी स्वस्थ रही।
2: किसी का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार की देखभाल कर पाएंगे। तो महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत ही आवश्यक है। मैं बात स्वास्थ्य की कर रही हूँ।
1: हाँ, स्वास्थ्य के सही कहते नहीं कि महिला सभन के ख्याल रख रहल बाड़ी, तो आपन भी ख्याल इस तरीका से रखी, जैसे कि महिला के शरीर में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन के ढेर मनी जरूरत रहेला। तो यही से खाए में हरियर तरकारी हो गई, फल हो गई, सलाद हो गई, दूध दही हो गई, पनीर हो गई, दाल, चना, सोयाबीन, सूखा मेवा, चाहे अंकुरित चना, मूंग हो गई, ये सब शामिल करे के चाहिए।
2: बहुत
1: और
2: जरूरी है,
1: ज़्यादा
2: क्योंकि
1: तेल
2: संतुलित
1: मसाला
2: आहार हो।
1: वाला, हाँ
2: हाँ
1: संतुलित आहार ली, तेल मसाला वाला ना खाएं, बाहर के जंक फूड तो एकदम से ना खाएं।
2: क्योंकि एक समय के बाद वो परेशानी उत्पन्न करती है। वही बात करें नियमित व्यायाम की, बहुत बार क्या होता है कि हमने घर का इतना काम कर लिया, क्या करें, अभी इतने सुबह से तो चल ही रहे हैं घर के अंदर, लेकिन वो व्यायाम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तरीके से होता है, कम से कम 30 मिनट सक्रिय रहना जरूरी है। हालांकि
1: एकदम
2: महिलाएं तो
1: एकदम।
2: उससे ज्यादा ही सक्रिय रहती
1: अब
2: हैं।
1: भोर पहर से बच्चा के स्कूल भेजना बा, लंच बनाना बा, उकरा बस पे चढ़ाना बा, चाहे वैन पे चढ़ाना बा, उकरा खाती भागा दौड़ी, फिर आके घर में फिर खाना बनाई, सास ससुर के देखी, तो पति के देखी, तो
2: लेकिन
1: सबके ही देख रेख करे में ऊ भूल जाए लेकिन उनको तनी सा 10 मिनट
2: समय समय
1: निकाल
2: देना
1: के
2: जरूरी। अब
1: अपना
2: व्यायाम की बात
1: व्यायाम कर
2: करें,
1: ली।
2: व्यायाम की बात करें तो व्यायाम करने से बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होगी, मधुमेह या हृदय रोग। तो इस तरीके से ये बहुत ही जरूरी है। वही बात आती है जो अभी के इस आधुनिक युग में जो हर किसी के लिए एक परेशानी के का सबब बना है, मानसिक स्वास्थ्य।
1: मतलब भाग दौड़ वाला जिंदगी में तनाव, जिम्मेवारी, ये सब तो बहुत ज्यादा मतलब देखे के मिल रहल बा और हर घर में बा, हर कोई के साथ बा। समस्या तो इतना बाटे कि का कहीं, समस्या के रूप अलग बा, कोई के कुछ समस्या तो कोई के कुछ समस्या, और इस समस्या के बीच नारी हर समय, महिला हर समय, हर काम में मतलब आपन ऐसन भूमिका निभावेली कि लगेला कि वो कैसे ई काम के करके अब पूरा दिन बिता देली, फिर भी रात में भी जब वो सुते जाए ली तो सांस लेके बोले ली कि का आज के दिन निकल गई, सब काम ढंग से कर लेनी, अपना खातिर समय निकलनी कि ना निकलनी, पर उनका अपना ख्याल रखे के चाहिए।
2: बहुत जरूरी
1: और
2: है मानसिक स्वास्थ्य की जो मैं बात कर रही हूँ मीनू बहन, तो उसमें ये जरूरी है कि आपको तनाव होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं घर गृहस्थी में या फिर खुद से जुड़ी हुई। तो ये मानसिक स्वास्थ्य आखिर कैसे हो सकता है? कहते हैं कि हम ध्यान करें, वहीं पे

0: सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है नींद। अगर 8 घंटे की नींद आप लेती हैं तो जो मस्तिष्क है वो संतुलित तरीके से काम कर पाएगा और मानसिक विकार नहीं होगा। वही बात निजी स्वच्छता की करें, जो
1: हाँ
0: कि समझ ही रही होंगी महिलाएं, जब मासिक धर्म आता है तो
1: हाँ
0: ऐसे में खुद को स्वच्छ रखना बहुत ही
1: साफ
0: महत्वपूर्ण
1: सफाई
0: है।
1: ओकरा में तो बहुत जरूरी बा, और समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी कराते रहें, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गए, हीमोग्लोबिन की जांच, शुगर के, थायराइड के जांच, स्तन और गर्भाशय संबंधी भी जांच जरूर कराएं।
0: बिल्कुल, अभी अभी जैसे सुनने में आ रहा है सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां जो महिलाओं में मतलब तेजी से बढ़ रही हैं, तो किस तरीके से खुद को स्वस्थ रखें कि, और इसके लिए जरूरी है कि नियमित जांच करवाएं 31 साल की उम्र के बाद।
1: हाँ
0: तो मिला जुला के ये कहना है कि हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए आपको खुद के लिए भी सोचना होगा, कम से कम 1 घंटा तो खुद के लिए जरूर दे दें।
1: हो सके तो अपना पसंद के गाना सुन ली ही, चाहे
0: हाँ
1: तनी देर मोबाइले देख ली ही मन पसंद के, और हो सके तो जिकरा से रवा बनता, जिकरा से मिल के सकारात्मक ऊर्जा मिलता, ओकरा से मिली बतियाई, फोने से बतिया ली, चाहे
0: बात तो
1: मिल के
0: सही है,
1: बतिया
0: और
1: ली।
0: मिल के बात करें,
1: अब
0: और
1: ऐसा ना कि केकरो से बतिया के एकदम दिमागे खराब हो गए कि
0: हाँ, तो
1: काहे ला
0: ये
1: भेट
0: बहुत
1: भइल आज।
0: जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, और बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी के पसंद का ख्याल रखते हैं, कभी खुद के पसंद का भी ख्याल जरूर रखें। इस तरीके से मुझे लगता है कि अब हम थोड़े अपने मन की बात कर लें।
1: एकदम एकदम रावर
0: जो
1: मन के बात तो हम जाना तनी, पर अपने से बता दही
0: मेरा मन है कि एक लोक भजन मैं सुनूं,
1: किकरा से
0: तो
1: सुनवाओ
0: सिर्फ मैं ही ना
1: तनी।
0: सुनो, आप भी सुने, हमारे श्रोता भी सुने, मंदाकिनी से की ये सुमधुर आवाज में सुनते हैं ये लोक भजन।
1: चलिए सुनल जाओ।

0: हाँ तो अभी हमने के सुनत रही मंदाकिनी सिंह से ई झूमर, तो खूब निमन लागल ना
1: बहुत अच्छा
0: प्रिया
1: लगा,
0: बहन रवा, तो खूब झूम झूम के सुनत रही।
1: क्योंकि अपने मन की बात थी आंगन।
0: तो चलिए अब समय हो गई बा प्रायोजित कार्यक्रम के, तो सुनल जाओ आयुष्मान।
2: आयुष्मान, ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबो का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ, क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस

0: लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामणि, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
1: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
1: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोस होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है, तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए,
0: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा

0: बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से 6206803040 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: तो अभी हम सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान, और आंगन की घड़ी यहीं समाप्त हो रही है, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की, क्यों मीनू बहन?
4: हाँ हाँ,
3: बात खेती गृहस्थी में हम बहुत सारे फसलों की करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको खाने में बड़ा मजा आता है मुझे, चाहे उसका

0: बन जाए,
1: हाँ चाहे भूंज के खा
0: चाहे भूंज
1: ले,
0: कर खा ले नाश्ते में कभी, होता है ना
1: चाहे
0: कि शाम में।
1: उपवास कैला पर ये
0: हाँ,
1: चीज के बहुत उपयोग होला, लोग बहुत चाव से खाला।
0: और उसके बारे में ये बता दे कि ये जो है ना, जिसके बारे में सुपर फूड जिसे हम कह सकते हैं, उसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है पूरी तरीके से। इसके सेवन से वजन घटता है, डायबिटीज कंट्रोल होता है, साथ ही साथ पाचन सुधारने में बड़ी मददगार है, हड्डियां मजबूत बनाती है, वहीं हार्ट का जो हार्ट है ना उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है और सूजन को भी कम करता है, साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है नींद की
1: हाँ,
0: वो पूरी करता है। इसको इस सेवन से ये सब कुछ होता है। आप सस्पेंस को हटाते हैं, बात करते हैं मखाने की।
1: देखिए मखाना एगो जलीय फसल है, रवा एकर बारे में कितना फरिया फरिया के बतैनी एकर। तो देखिए भारत में एकर खेती सबसे अधिक बिहारे में होखेला,
0: हाँ
1: और खास करके मिथ्यांचल क्षेत्र में। मखाना पौष्टिक आहार के संगे संगे किसान भाइयन के आमदनी के एगो नीमन स्रोत भी है। एकर बीज के भून के मखाना बनावल जाला। मखाना के खेती खातिर उपयुक्त जलवायु के बात करी तो गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे नीमन मानल गेल बा। तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहे के चाहिए। स्थिर पानी वाला तालाब, पोखर या खेत खेती ला नीमन होखेला।
0: बहुत अच्छा होता है, और उसमें 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ होना
1: अब मतलब
0: चाहिए।
1: मखाना के खेती मुख्य रूप से दू गो तरीका से कैल जाला, पहला तालाब में और दूसर तरीका बा खेत आधारित प्रणाली में। तालाब में जैसन की रवा कहनी 1 से 1.5 मीटर तक पानी रहे के चाहिए। पुराना खरपतवार और गंदगी साफ करके ही खेती करी। मट्टी के समतल कैल जाला खेत वाला तैयारी में, एकरा में गोबर के खाद डाल के ओकर उर्वरा शक्ति बढ़ा देवल जाला। एकर बुआई के बात करी तो दिसंबर से फरवरी के बीच कैल जाला। स्वस्थ और निमन बीज के चुनना बा बीज के पानी में फैला दिहल जाला। कुछ दिन के बाद पौधा उगे लगेला और पानी के सतह पे बड़का बड़का गोल गोल पत्ता
0: हाँ,
1: दिखाई दिहे लगेला।
0: ऐसा
1: अगर
0: ऐसा पहले जब बचपन में देखती थी ये क्या है, मैं यही सोचती थी ये है क्या।
1: हाँ
0: आज जब इसके बारे में जान चुकी तो मुझे लगता है कि वाह, इसकी जो खेती होती है और ये जो मखाना है जो सबसे ज्यादा यहाँ से निर्यात भी होता है।
1: हाँ तो देखिए एकरा में सड़ल गोबर के खाद उपयोगी होखेला, जैसे कि तालाब के बात करतनी और एथी के खेत के बात करतनी। आवश्यक अगर जरूरत बाटे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस भी दे सकीला। कीट और रोग नियंत्रण खातिर पत्ता पे अगर कीड़ा लागत बा तो तुरंते ओकर उपचार करी। ऐसा ना कि कीड़ा लग गए तब तो समझी
0: हाँ,
1: कि
0: मतलब
1: मखाना
0: शुरुआत में ही
1: एकदम।
0: करने से वो ठीक
1: हाँ,
0: रहेगा।
1: दवा के प्रयोग भी कर सकीला। हमेशा ध्यान दही कि पानी गंदा ना होखे
0: नहीं,
1: तालाब
0: हाँ
1: के।
0: हाँ
1: मखाना के पौधा में फूल आवे के बाद फल आवेला। फल पानी के भीतर मतलब तैयार होखेला। जब फल पक जाएला
0: तो गोताखोर
1: तब
0: जा करके वहां से
1: ना
0: निकाल।
1: ना उनकर बीज जो होला नीचे
0: हाँ
1: कीचड़ में गिर जाला
0: हाँ हाँ
1: और फिर वो गिरल बीज के चुनल जाला। आई अगस्त से अक्टूबर के बीच कटाई मतलब समझी एकर होखेला। और बीज के सुखावल जाला फिर भुनल जाला और गर्म बीज के लकड़ी से लकड़ी के हथौड़ा से फोड़ल जाला। तब अंदर के उज्जर भाग फूल के मखाना बन जाला।
0: मखाना बन जाता है। मतलब इसमें है जो भी मेहनत, और इसके फायदे, इसीलिए तो ये थोड़ा महंगा भी है, लेकिन
1: हाँ,
0: स्वास्थ्य के
1: बाजार में
0: लिए।
1: एकर कीमत तो बहुत बा
0: हाँ, क्योंकि
1: एकर।
0: इसमें मेहनत भी बहुत है लेकिन फायदे बहुत हैं। हमारे किसान भाई और बहन जो इसकी खेती करते होंगे
1: हाँ,
0: उनको काफी लाभ मिलता होगा, और मुझे लगता है कि इसे कहीं भी करना बड़ा आसान है। तो आप
1: एकर
0: तालाब
1: पास
0: या
1: तालाब बा,
0: हाँ
1: तालाब में करे ऐसन बा, खेत तो खेत में भी हो सकेला
0: हाँ
1: जब एकर।
0: तो ये तो हमने बात की मखाना की खेती के बारे में, और जैसा कि हम हमेशा चाहते हैं कि अपना वादा पूरा करें, लोकगीतों को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो मंदाकिनी सिंह की आवाज़ में सुनते हैं प्यारा सा पूर्वी।

0: हाँ, तो अभी हमने के सुने रही मंदाकिनी सिंह से पूर्वी गीत।
1: बहुत ही मजा आया इसे
0: हाँ,
1: सुनकर के, हमारे श्रोताओं को भी बड़ा मजा आया होगा।
0: समय रही तो आगे इंकरा से और भी गीत हमने के सुने के।
1: हाँ
0: अब समय भइल बा एगो मतलब महत्वपूर्ण वार्ता सुने के। तो चलिए, किसान भाइयन के फायदा वाला ये वार्ता बाटे। वार्ता के विषय बा जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव, और वार्ताकार बणन आलोक कुमार।
2: जलवायु परिवर्तन वास्तव में विकसित और विकासशील देशों के बीच

वाद विवाद का एक मुद्दा बन गया है। संसार के अधिकांश लोगों के लिए हो सकता है कि यह महज एक खबर हो और विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का विषय, लेकिन विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि खेती, भोजन, पानी, हवा, आजीविका, आवास एवं स्वास्थ्य आदि सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है और कभी न कभी हम सभी का जीवन जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होता है। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग या द्वीपीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग विनाशकारी समुद्री तूफान का कहर झेलने को मजबूर हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से इनका जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। उसी प्रकार मैदानी और अन्य भागों में रहने वाले लोग असामान्य मानसून, जल संकट, सूखे एवं बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे लोग कई बार अपने मूल निवास स्थान से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वास्तव में यह सभी प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर सबसे अधिक कृषि पर होने की संभावना रहती है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लाभदायक प्रभाव की अपेक्षा जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव काफ़ी अधिक हैं। हमारे देश की कृषि मुख्य रूप से मौसम पर आधारित है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में कृषि एवं कृषि के विभिन्न घटक जैसे जैव विविधता, फसलों की उपज, सिंचाई, मिट्टी इत्यादि जलवायु परिवर्तन के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अभी तक के उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में मौसम में जो विपरीत परिवर्तन होंगे उसको रोकने के लिए अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो कृषि के उत्पादन में काफ़ी कमी आ सकती है। वास्तव में इन सभी परिणामों के लिए मनुष्य स्वयं दोषी है। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मनुष्य हरे भरे पेड़ पौधों को काट रहा है। जंगलों की कटाई के साथ ही इसमें रहने वाले जीवों को आश्रय विहीन कर रहा है, जिससे जंगली पशु पक्षी और अन्य जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। गिद्धों की संख्या लगभग नहीं के बराबर रह गया है, जिसके कारण मरे हुए जानवरों के लाश खुले में सड़ती रहती है और परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण बढ़ता जाता है। शहरों ही नहीं बल्कि गांव में भी मकान और गोदाम आदि बनाने के लिए खेत खलिहानों को उजाड़ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यह अपर्याप्त है। वास्तव में पर्यावरण संतुलन के लिए सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को आगे आना होगा और पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी होगी। संसार में मनुष्य की आबादी गुणोत्तर दर से बढ़ती जा रही है, लेकिन खेती योग्य जमीन लगभग सीमित है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को उचित पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाने के लिए और खाद्य आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए विश्व में कृषि उत्पादन को 2050 तक दोगुना करने की आवश्यकता होगी, ऐसा खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत 7वें स्थान पर था, जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में यह 8वें स्थान पर है। इस प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है और इसका कारण है कि कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखने की शर्त को पूरा नहीं कर पाया है। यह सूचकांक स्पष्ट करता है कि भारत सहित संसार के बाकी देश भी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से प्रभावित है। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। एक समान वर्षा नहीं होने के कारण फसलों का उत्पादन काफी प्रभावित होता है। भारत के बहुत सारे गांव में हरियाली और पेड़ पौधों का अभाव है। राजस्थान में तो हरियाली का और अधिक अभाव है। बहुत से गाँव में तो मवेशियों के लिए चारे का भी अभाव होता है। इन सब कारणों से वैसे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपने गांव में खेती की जमीन छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं और मजदूरी का काम करने को विवश होते हैं, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का कौशल नहीं होता है। भारत के किसान इस मामले में भाग्यशाली है कि उसके हिस्से में मानसून की अच्छी वर्षा आती है, लेकिन दूसरी ओर तापमान के बढ़ने से भी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर और एक राज्य के अंदर भी अलग अलग जिलों के मौसम में विविधता देखने को मिल जाती है। 2022 के जारे में राजस्थान के बीकानेर में पाले का प्रकोप काफ़ी अधिक देखने को मिला, जबकि जोधपुर,
जैसलमेर आदि में स्थिति अलग थी। बेर जैसे पौधे पर भी वहां पाले का

अत्यधिक प्रभाव दिखा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल बीकानेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ के सभी बेर के पौधे, अनार के पौधे और कुछ अन्य पौधों को पाले ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। एक अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण सन 2100 के आते आते फसलों की उत्पादकता में लगभग 10 से 40% तक की कमी आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होगी और पाले से होने वाले नुकसान में कमी आ सकती है। इस प्रकार जो फसल पाले से अधिक प्रभावित होती है उनका कम नुकसान होगा, जैसे आलू, मटर और सरसों। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और बाढ़ की समस्या में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता की स्थिति आ जाएगी। बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या बनी रहती है और जिसके कारण बाढ़ के समय फसल उत्पादन में अनिश्चितता तय होती है। अगर जलवायु परिवर्तन इसी प्रकार से होता रहा तो आगे चलकर यह समस्या और विकराल हो जाएगी। कुछ परिस्थितियों में तो फसलों को बोए जाने का क्षेत्र भी बदलना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उस फसल के गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर मुजफ्फरपुर के लीची का क्षेत्र बदलना पड़ा तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि गुणवत्ता पर कितना असर पड़ेगा। अभी के समय में लीची को कई अलग अलग जगहों पर लगाकर देखा गया है कि इसके उत्पादन और गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है, लेकिन जितना गुणवत्ता युक्त उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है वह कहीं नहीं प्राप्त हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्रों और नदियों में के पानी का तापमान बढ़ सकता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जलीय जीव और मछलियों की प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक क्षेत्र आधारित एवं दूसरा फसल आधारित। इसके अनुसार एक क्षेत्र के प्रत्येक फसल पर या विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न फसलों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। एवं खरीफ के मुख्य फसलों पर इसका प्रभाव दिखने लगा है और भविष्य में अगर इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब इनकी उत्पादकता में काफी कमी आ जाएगी। भारत में कुल फसल उत्पादन का 42.5% हिस्सा धान की खेती का है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे ही इसका उत्पादन घटने लगेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से धान के उत्पादन में लगभग 0.75 टन प्रति हेक्टेयर की कमी आएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण धान की फसल गेहूं की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि भारत में धान मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल है। धान की फसल को इन हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए तापमान रोधी किस्मों का विकास करने की आवश्यकता होगी। बाढ़ वाले इलाके के लिए धान की जलरोधी किस्मों का विकास करना एक उपाय हो सकता है। फसलों की विकास अवधि, फसल विकास और फसल गुणवत्ता पर जलवायु परिवर्तन का असर होता है। तापमान में वृद्धि के कारण पौधों की वृद्धि में गति आएगी और परिणाम स्वरूप वार्षिक फसलों की बुआई और कटाई के बीच की अवधि कुछ छोटी हो जाएगी। उदाहरण के लिए मकई की फसल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है और इसकी बुआई से कटाई की अवधि में 1 सप्ताह से 4 सप्ताह तक की कमी आ सकती है, लेकिन मकई के विकास अवधि के कम होने से इसकी उत्पादन क्षमता में भी कमी आएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फसल चक्र के छोटा होने से किसी फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अति आवश्यक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से फसलों के विकास पर लाभदायक और हानिकारक दोनों तरह के प्रभाव हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप लाभदायक परिणाम होने की संभावना रहेगी। वर्तमान में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 380 ppm है, जो कि अगले 30 से 50 वर्षों में 450 ppm हो जाने की संभावना है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पौधों में कम रंध्र निकलते हैं, जिसके कारण जल का उपयोग कम हो जाता है। C3 पौधों जैसे कि गेहूं, धान, सोयाबीन आदि पर C4 पौधों जैसे कि मक्का और ज्वार की अपेक्षा बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पौधों द्वारा नाइट्रोजन लेने की मात्रा में कमी करता है, जिसके कारण उन पौधों में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। इससे विकासशील देशों के लोग काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास भोजन की उपलब्धता सीमित या कम होती है। चारा फसलों में नाइट्रोजन की कम मात्रा पाए जाने से भेड़ों के पेट में पाए जाने वाले जीवाणु कम सक्रिय होता है, जिससे भेड़ चारा को आसानी से नहीं पचा पाता, क्योंकि यह नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही सक्रिय होता है। इस प्रकार भेड़ों की उत्पादकता में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होगी, जिसके कारण फफूंद जनित रोगों का विकास हो सकता है, साथ ही कीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
अधिक वर्षा होने के कारण

0: मृदा क्षरण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर मृदा को अधिक जल की उपलब्धता होगी। अगर सूखा पड़ता है, जो कि अधिक तापमान के कारण हो सकता है, तो मृदा में जल की कमी हो सकती है। इस प्रकार मृदा काफी शुष्क हो सकती है।
1: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव। वार्ताकार थे आलोक कुमार, इनको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और फिर से मन करता है कि काहे ना झूमे वाला एगो झूमर हमने के सुन लेवल जाओ,
1: बिल्कुल, हमने
2: मंदाकिनी सिंह से
1: हमने वादा किया था, तो चलिए सुनते हैं।

0: तो
1: वाह,
0: मंदाकिनी सिंह से ये हम लोगों ने बहुत ही प्यारा झूमर
1: सुनी
0: सुना।
1: झूमर। वह तो खूब झूम झूम के सुनत रही,
0: आप भी झूम
1: और
0: रही थी।
1: श्रोता बंधु भी खूब झूम के सुन ले होखी हैं।
0: हाँ,
1: और अब घड़ी के इशारा तो होता है कि हमनी के विदा लेवे के
0: अभी तो मैंने
1: चाही,
0: सोचा कुछ और बातें करें, लेकिन
1: तो
0: चलिए
1: तनी
0: ठीक है।
1: समय भी देखी, घड़ी भी देखी, विदा लेवे के
0: हाँ,
1: समय भूल बा
0: तो आज जाएंगे तभी तो कल आएंगे अपने इस
1: एकदम।
0: कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को मिली कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग की जाएगी।
1: हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो दो मांग जो यहाँ पर आई है, बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूँगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूँगा सर।
0: श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने टीएमसीएच में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सब अक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को 354 मतों के अंतर से पराजित किया। यह सीट पूर्व एमएलसी राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। परिणाम घोषित होने के बाद राजद कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को बधाई दी है।
2: बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
0: पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार करने का अभ्यास है।
3: घड़ी की सुई में जैसे ही 7 बजे सायरन की आवाज से पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में जनजीवन थम सा गया। विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई। 15 मिनट तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और गाड़ियों के हेडलाइट्स बंद हो गए। इस दौरान लोगों ने संयम दिखाते हुए प्रशासन का पूरी तरह सहयोग किया। एक बार फिर सायरन की आवाज बजने के बाद स्थिति सामान्य हुई। समाचार के लिए पटना से निदेश्री।
0: देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की सूचना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी।
4: एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट

0: सॉर्टेड नहीं है।
1: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से अपने कारकेड में वाहनों की संख्या घटाने का निर्देश दिया है। अब राज्यपाल के कारकेड में केवल 3 वाहन शामिल रहेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों को भी अत्यंत आवश्यक होने पर ही सरकारी वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है। इधर नगर विकास मंत्री नितेश मिश्रा ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने अन्य लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने को कहा।
2: मुझको लगता है यथासंभव सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और खुद भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तो हम सबका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय हित में जितना संभव हो एनर्जी सेव करें। सब लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एनर्जी कंजर्वेशन है उस दिशा में उसके लिए भी मदद करेंगे और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।
1: खगड़िया जिला प्रशासन ने प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मियों और अधिकारियों को बिना वाहन आने की अपील की है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की 100 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है। BRO के अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चांद ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से के पास 24 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक सेतु पर परिचालन शुरू होने की संभावना है।
3: पहुंचना शुरू हो गया है। अब जो टेक्निकल कार्यक्रम है अलाइनमेंट सेट करके उस पर हम लोग लगने वाले हैं। सामान आने के बाद लॉन्चिंग वगैरह करने में 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन का ऐसे समय लगता है। सब मिला करके बहुत सारे कार्यक्रम करने होते हैं इसके अंदर में, तो हो जाएगा।
1: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं इस अवधि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है।
5: दिनांक 14 मई को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर निपटाने का आदेश दिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में टीबी के मरीजों को अब 30 दिनों की दवा एक साथ मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में टीबी की दवा उपलब्ध करा दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने राजद नेता की गिरफ्तारी पर कहा कि यह एक गंभीर मामला है, राजद के नेता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
6: दिल्ली पुलिस ने पूरे भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड

0: तेजस्वी का दुलारा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं।
1: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई दी है। श्री कुमार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। जदयू कोटे के मंत्री सप्ताह में 5 दिन पटना प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और श्वेता गुप्ता ने लोगों की समस्याओं को सुना। राजगीर में लगने वाले मलमास मेले को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने राजगीर और हावड़ा के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार शरीफ, अस्थावां, परभिघा, शेखपुरा, केउल और भागलपुर के रास्ते चलेगी। हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन 16 मई से 17 जून तक तथा राजगीर हावड़ा स्पेशल ट्रेन 17 मई से 18 जून तक प्रतिदिन संचालित होगी। ट्रेन में शयनयान और साधारण श्रेणी सहित कुल 14 कोच लगाए गए हैं। किशनगंज जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे कलकलिया थाना क्षेत्र से एसएसबी और स्थानीय पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और भारत, चीन, कतर तथा सऊदी की करेंसी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी से जोड़कर जांच कर रही है। कैमूर जिले के भभुआ व्यवहार न्यायालय ने असम राइफल्स के सूबेदार मेजर शशिभूषण तिवारी की हत्या के मामले में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने और जनता की शिकायतों के प्रति नकारात्मक रवैये को लेकर 3 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। इसमें भर्राई के थानाध्यक्ष अरमोद कुमार सिंह, बिहारीगंज के कृष्ण कुमार सिंह और पुरैनी थाना के चंद्रजीत प्रभाकर शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं वैशाली जिले के बेदुपुर थाना क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने हथियारों के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के महमदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे रोहतास के 28 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया। इन सभी को वहां बंधक बनाकर काम लिया जा रहा था। इधर शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इन बच्चों के नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद दोहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मॉडल स्कूल ओंकार प्रवेशिका विद्यालय केशरबाग का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति कम पाए जाने पर उन्होंने अभियान चलाकर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, ICT लैब की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF को मिली, कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: Star.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
1: बिहार विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोजपुर और बक्सर में 12 मई को मतदान संपन्न कराया गया। कुल 6086 निर्वाचक मतदाताओं में 97.96% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना आज 14 मई को हुई, जिसमें राजद के सोनू राय ने जदयू के कन्हैया प्रसाद को 300 से भी अधिक मतों के अंतर से परास्त कर दिया है। यह सीट राधाचरण शाह के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। संदेश से जदयू के टिकट पर विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस सीट से जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू राय सहित 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनमें बागी उम्मीदवार भी शामिल हैं। भोजपुर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने आम लोगों से अपील की है कि नागरिक सही सही जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों का सहयोग करें। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की है। श्री मोदी की इस अपील पर जिले में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सर्राफा व्यापारी चिंतित हैं, हालांकि वे इस विषय पर बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा है कि वे तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल तथा सोना चांदी की खरीद से जुड़ी अपील के पक्ष में हैं। लोगों का कहना है कि यह कदम देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भोजपुर से 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। आरा से भाजपा विधायक संजय सिंह टाइगर को इस विधानसभा कार्यकाल में लगातार 2री बार मंत्री बनाया गया है। उन्हें उच्च शिक्षा सह विधि विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वहीं जगदीशपुर विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्रिमंडल में नए चेहरे के रूप में शामिल किया गया है। उन्हें योजना एवं विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है।
0: और अब प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल।

0: इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
1: बक्सर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रांगण घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है जो 30 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि नागरिक सही से जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों को सहयोग करें। इससे पूर्व राज्य सहित जिले के 17 अप्रैल से 1 मई तक स्व जनगणना अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से पूछे गए सवालों का जवाब देकर जनगणना में भाग लिया। प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए बक्सर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत उन्हें सहजने और डिजिटलीकरण की मुहिम तेज कर दी गई है। बक्सर में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की 100 वर्ष से पुरानी एक अनमोल पांडुलिपि प्राप्त हुई है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इन पांडुलिपियों को डिजिटीकरण और भौतिक संरक्षण पर विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सहले ने सीताराम संग्रहालय का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह अभियान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिले के व्यवहार न्यायालय में वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झा, डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस शिविर में सुलहनीय आपराधिक मामलों, वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली विभाग से संबंधित मामले सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। बीते दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इंटरमीडिएट 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में जिले के लगभग 10,000 छात्राओं ने भाग लिया था। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया। जिले के हजारों विद्यार्थियों ने बेहतर अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। सफल छात्र छात्राओं ने उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की, वहीं शिक्षकों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
0: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर और बक्सर जिले की हलचल। भोजपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा, जबकि बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी पटना से बोल रहे हैं। आइए सुनिए सुगम संगीत।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक, धनुक, महताब, घटाएं, तारे, नगमे, बिजली, फूल।

देर लगी आने में तुमको, ये गज़ल आप सुन रहे थे अभी जगजीत सिंह की आवाज़ में। कार्यक्रम था सुगम संगीत, कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आप सुन रहे थे सोनू निगम और सपना अवस्थी को फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कामचोर से। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। अब सुनिए बातों बातों में। इस कार्यक्रम में आईपीएस विकास वैभव से बातचीत कर रहे हैं सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके मुहिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
1: जी हमारा भी सौभाग्य, हम गौरवान्वित हैं आपको हमारे स्टूडियो में पाकर। श्रोताओं हम बता दें विकास वैभव जी 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के एडवाइजर के पद पर पदस्थापित हैं आप। सर सबसे पहले हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन और आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई।
2: देखिए मूल निवासी मैं बेगूसराय जिले के बीहट गांव का हूं। मेरे पिताजी भी इंजीनियर रहे और बीआईटी सिंदरी से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं दी, तो इसीलिए मेरे जन्म के पश्चात बहुत स्थानों पर मेरा रहना हुआ। पिताजी की जहां जहां पोस्टिंग होती गई, गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, भोपाल, दिल्ली, पानीपत आदि स्थानों पर रहकर पढ़ाई की। लगभग 7 विद्यालयों में पढ़ना हुआ
1: जी।
2: सबसे अधिक यदि किसी विद्यालय में रहा तो बेगूसराय के सेंट पॉल स्कूल में क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक रहा। 9th में भोपाल में था और 10th, 11th, 12th दिल्ली में रहा। उसके पश्चात IIT कानपुर 97 से लेकर 2001 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की और IIT से निकलने के तुरंत बाद सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हुआ था, जिसके लिए 2002 वाली परीक्षा में 2003 में रिजल्ट आया और 60वां रैंक मिला, बिहार कैडर मिला इंडियन पुलिस सर्विस। तब से बिहार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
1: जी बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की IIT कानपुर से, उसके बाद फिर UPSC की परीक्षाएं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली?
2: देखिए प्रेरणा तो मुझे लगता है बाल्यकाल में ही एक घटना हुई थी। बहुत पहले क्लास 7th में था, समस्तीपुर में एक जगह है पांडव स्थान
1: जी,
2: जहाँ ऐतिहासिक चीजें मिल रही थी और लोग लूट रहे थे। तो उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन इन्हें रोकेगा, कौन समझाएगा। एक बालक के मन में भाव तो था लेकिन बालक के कुछ सुनने वाला नहीं था। लेकिन अगले दिन मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश लगा दिया है और उस समय धारा 144 लगी और पुलिस फोर्सेज आ गई, तो जो उत्खनन लोगों के द्वारा चल रहा था रुक गया। तभी कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया था कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे समाज में परिवर्तन में मेरी भूमिका हो। आगे चलकर पिताजी की पोस्टिंग जब भोपाल हुई तब 9th में

0: वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया। इस बात ने मेरे मन में बहुत गहरा आघात पहुँचा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक क्यों हो गया। और तब ही मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूंगा जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, इसमें मेरी भूमिका हो। झटके और भी लगने थे, तो उसके बाद IIT की मैंने जब तैयारी की, पिताजी दिल्ली आ गए थे और IIT के पेपर 1997 में, अगर आप याद करेंगे, लीक हुए थे
1: जी।
0: उसने भी मेरे मन पर बड़ा गहरा आघात पहुंचाया कि जिस बिहार की भूमि ने कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को दिया, उपनिषदों की दृष्टि दी, वैसे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे छात्र शॉर्टकट के पीछे लगे हैं, लोग पेपर लीक कराने तक में लगे हैं। तैयारी मैंने दोबारा की, दोबारा परीक्षा हुई, सिलेक्शन हुआ, IIT कानपुर पहुंचा। पिताजी की पोस्टिंग फिर से हो गई बेगूसराय, बोरानी रिफाइनरी टाउनशिप, फर्स्ट ईयर के बाद। और उस समय अंतिम, जिसको कह सकते हैं, एक ऐसी घटना घटी। घर जाना था, सभी लोग तैयार थे, मेरी भी तैयारी थी, लेकिन घर से फोन आया उस समय कि बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है, तो इसलिए भी लगन का समय चल रहा है, कुछ दिन अब वही कैंपस में रही है। और इस घटना ने लगभग कुछ दिनों तक रहना पड़ा और बहुत उद्वेलित होता था, चिंतित होता था बिहार को लेकर। एक निर्णय मैंने लिया कि अपने जीवन में कुछ तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम सिविल सेवा हो सकता है, जिसमें कम आयु में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में हम योगदान कर सकते हैं। बाद में IIT में कैंपस प्लेसमेंट मेरी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी हुई, जर्मनी के कंपनी में भी हुई, लेकिन मन निश्चित हो चुका था कि कुछ करना है और बिहार के वो बदलने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। तो सिविल सेवा की तैयारी मैंने IIT में ही प्रारंभ कर दिया था और निकलते ही मैंने परीक्षा दी, और उसी का नतीजा है कि IPS बना और किस्मत अच्छी थी, बिहार मिला, तो बिहार में सेवा देने का अवसर मिला।
1: आपके शिक्षा दीक्षा और आपके व्यक्तिगत जीवन से हमें ये पता चलता है कि सकारात्मक बदलाव लाने के ध्येय से आप सिविल सेवा में आए और बिहार का गौरव वापस करने, या कहें कि देश की सेवा के लिए, देश में, समाज में सुधार लाने के लिए आप इस सेवा में आए और लगातार उसमें आप अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम देखें कि 2003 में आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद ASP, CTSP, सीनियर SP, फिर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी आपने सेवा दी, इसका कुछ अनुभव?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मन में भाव था समाज को कुछ देना है और एक बड़ा संकल्प था मन में, जिसके लिए आज भी काम कर रहा हूँ। तो बिहार में जो पोस्टिंग्स मेरी हुई, शुरुआत में जब आया था औरंगाबाद में ASP के रूप में पहली पोस्टिंग हुई
1: जी।
0: और 2005 के अंत में ASP दानापुर के रूप में पटना में पहली पोस्टिंग हुई थी, वहीं से CTSP पटना बने, फिर बघा SP, रोहतास SP के रूप में पोस्टिंग हुई, जहां अपराध उग्रवाद से उलझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसको समाप्त करने के लिए मैंने प्रयास भी किए, जो सफल भी हुए। इसी समय 26/11 का अटैक हुआ था, जिसने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मुझे लगा कि एक नई एजेंसी बन रही है NIA, जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करेगी, तो अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को इस एजेंसी में जाने का प्रयास करना चाहिए। NIA बनने के कुछ दिनों बाद ही मैंने उसमें आवेदन दिया था। उस समय बिहार में चुनाव होने थे 2010 में, तो चुनाव के बाद 2011 में मुझे NIA के लिए रिलीज किया गया और NIA के शुरुआती दिनों में NIA के संगठित करने में, उसके अन्वेषण में मेरी बड़ी भूमिका रही। उस समय के जो बड़े महत्वपूर्ण केसेस थे मुझे मिले और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करने का प्रयास किया। NIA जाने के बाद पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन में मेरी अनुभव, विशेषकर इंटरनेशनल लेवल की पुलिस में किस प्रकार से काम की जाती है, टेररिज्म के लिंकेजेस क्या हैं, कहां से रिक्रूटमेंट होता है, फंडिंग कैसे होती है, इन सभी विषयों पर अच्छी जानकारी मुझे मिली, जो मुझे लगता है प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर आई ग्रू। वहीं से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब आया था तो पटना में पोस्टिंग हुई सीनियर SP के रूप में, जहां पहले ASP भी रहा था, CTSP भी रहा था, अब एक नई भूमिका में सीनियर SP के रूप में था। और उस समय बिहार में 2015 में चुनाव भी होने थे, तो शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, साथ साथ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भी मेरे द्वारा किए गए। उसके बाद एक वर्ष करीब ट्रेनिंग में पटना में ही रहा और पुलिस के प्रशिक्षण में मेरी भूमिका रही। फिर DIG बनने के बाद भागलपुर में लगभग 3 वर्ष DIG के रूप में, कुछ समय मुंगेर में भी रहना हुआ। 27 अक्टूबर 2013 की घटना है, जो उस समय पहले बोधगया ब्लास्ट हुए थे 7 जुलाई को, उसके बाद पटना में ब्लास्ट हुए थे। उस समय NIA में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और पटना ब्लास्ट से पहले ही लगभग यूं समझे कि हम लोग बोधगया के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और रांची के एक मॉड्यूल पर संदेह था, एक व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने वारंट भी प्ले किया हुआ था। और जब पटना ब्लास्ट हुआ तो लगभग वो संदेह पूरा यकीन में बदल गया और उसका अरेस्टिंग शुरू हुई। एक बड़ा मॉड्यूल समक्ष आया, उसमें अनेक युवक जो रांची के आसपास के रहने वाले थे, उनको जो उन्होंने अरेस्ट किया, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ और सभी टेररिस्ट पकड़े गए। बाद में उन केसेस का ट्रायल कराया गया, दोनों ही केसेस में कन्विक्शन हुआ है, बोधगया ब्लास्ट में भी हुआ है और पटना ब्लास्ट में भी, कुछ लोगों को फांसी तो कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई।
1: प्रशासनिक सेवा में रहकर और इतनी जोखिम भरी सेवा, इसमें जान जाने की भी संभावना रहती है और कई लोग, हमारे ऑफिसर शहीद भी हो जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार की दृढ़ शक्ति होती है, वो कहाँ से आता है उसको?
0: तो मैंने कहा कि सेवा में आने का कारण एक संकल्प था कि बिहार में बड़ा बदलाव करूं, तो इसीलिए किसी भी संकट के लिए मैं तत्पर रहा, तैयार रहा, तो कभी उसे घबराने का भाव कभी मन में नहीं आया। कहा भी जाता है द प्रोफेशन ऑफ अ

0: पुलिस ऑफिसर हैज द डिग्निटी ऑफ डेंजर, तो पुलिस के
1: जी
0: जीवन में खतरा जो है वो तो उसका अंग है, उसको लेके हम लोग चलते
1: जी
0: हैं। और
1: जी जी
0: कई अवसर आते हैं, मुझ पर भी गोलियां चली थी रोहतास में बहुत नजदीक से, मुझे लगता है 6 इंच करीब से सैकड़ों गोलियां निकली थी, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ कहाँ फंसा। मन में यही भाव था कि मैं निमित्त हूँ, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित ही सपना साकार होगा। बघा से अपराध मिटा, रोहतास से उग्रवाद मिटा, तब मिटा जब लोग जुड़े, उस भाव के साथ जुड़े कि परिवर्तन संभव हो सकता है। आज पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसलिए चला रहा हूँ
1: जी
0: क्योंकि संकल्प तो बचपन से ही था कुछ करना है, लेकिन जो दो अनुभव बघा में हुए, जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, पुलिस के अनेक ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर भी हुए, और लोग इस कदर हार मान चुके थे कि कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। वहां
1: जी
0: जब
1: जी
0: सोच को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया, गन्ना काटा, सरकार के खजाने में पैसे जमा हुए, जिस भूमि पर डकैत गन्ना लगाया करते थे, और एक एक परिवार से बात करने के बाद हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। तो इस बात ने बड़ा गहरा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर डाला होगा, और उसी का नतीजा था लगभग 26 गैंग लीडर्स ने सरेंडर किया, और जो अपराध 100-150 प्रतिवर्ष किडनैपिंग के रूप में हुआ करती थी, शून्य पर आ गई थी जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में भी उग्रवाद चरम पर था, 2002 में DFO शहीद हुए थे, 6 में DSP शहीद हुए थे विक्रमगंज में, अनेक घटनाएं बराबर होती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे, लेकिन तब जब आदिवासियों के साथ हम लोगों ने संवाद किया और कहने लगे कि आपके पूर्वज अति यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है, इस बात ने एक एक गाँव में लोगों के मन में बड़ा प्रभाव डाला। और जब अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से हम प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बड़े परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रोहतास में जितने भी आदिवासी युवक थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, यह कहते हुए कि क्षेत्र की संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में असीम हैं, और यदि क्षेत्र का विकास होना है तो शांति आनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सभी गाँव में जिन युवकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, उन लोगों ने उग्रवादियों का विरोध किया, और ऐसा विरोध किया कि उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। जो अनुभव मुझे मिले उससे मुझे लगता है कि जब पूरे बिहार में हमारे युवा अपनी विरासत से प्रेरित होंगे, यह देखते हुए कि बिहार वह भूमि रही है जिसमें जिस काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे सूचना के तंत्र थे, हम कुछ अलग कर रहे थे। अखंड भारत के साम्राज्य की रचना यहीं से हुई, जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, तब हम नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। गणित और विज्ञान का आधार जो शून्य है, बिहार की भूमि पटना नहीं दिया। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में जहाँ स्थापित हुआ, केवल जाति के आधार पर लोग नहीं अपने गणराजाओं को चुनते थे, पूरे उस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर आते थे और बिना विवाद के अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। तो बिहार कुछ अलग भूमि थी। इसकी जब जड़ में जाता हूँ क्यों ऐसा था, क्यों हम अलग हुए, तो मैं पाता हूँ कि वेदों के जो उत्कर्ष वेदांत को इसी भूमि ने कभी प्राप्त किया था, जिसमें दृष्टि यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, और जब व्यक्ति में इस प्रकार की दृष्टि आ जाए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश भी है और पूर्णता लिए हुए, तो ऐसा व्यक्ति जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से परे सोचने लगता है, और तब वह संभावना जगती है जहां हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते हैं। तो बिहार में जोड़ने की क्षमता थी, परे सोचने की क्षमता थी, जातियां प्राचीन बिहार में थी, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें कई बार आजकल हम संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, यदि प्राचीन बिहार में रहता तो मगध में नंदवंश का उदय संभव ही नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते। हम लोग अलग लोग थे जिनकी यदि आधार कहें तो वेदांत की उस बृहद दृष्टि में थी। इसीलिए आज मुझे लगता है जब हम उससे प्रेरित होकर हम योगदान करेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा।
1: जी, आपके बातचीत से हमें यह पता चलता है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से भी काफी प्रभावित हैं और वेदांत दर्शन की भी बात आप कर रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या समझे वेदांत दर्शन क्या है?
0: देखिए, जैसे वेदों में जब हम लोग पढ़ेंगे, सारी ऋचाओं को देखेंगे, तो हम पाएंगे हम कहीं ना कहीं उपासना भी कर रहे हैं, सभी के लिए कामना भी कर रहे हैं, लेकिन एक रहस्य के बारे में चर्चा होती जब है तब हम एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। चाहे नासदीय सूक्त हो, उसमें भी हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना जिन्होंने की।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके मुहिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सीनियर IPS ऑफिसर श्री विकास वैभव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
0: जी, बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
1: जी, हमारा भी सौभाग्य, हम गौरवान्वित हैं आपको हमारे स्टूडियो में पाकर। श्रोताओं, हम बता दें विकास वैभव जी 2003 बैच के IPS ऑफिसर हैं, वर्तमान में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के एडवाइजर के पद पर पदस्थापित हैं आप। सर, सबसे पहले हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन और आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई।
0: देखिए, मूल निवासी मैं बेगूसराय जिले के बीहट गांव का हूँ। मेरे पिताजी भी इंजीनियर रहे और BIT सिंदरी से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं

0: तो इसीलिए मेरे जन्म के पश्चात बहुत स्थानों पर मेरा रहना हुआ। पिताजी की जहां जहां पोस्टिंग होती गई, गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, भोपाल, दिल्ली, पानीपत आदि स्थानों पर रहकर पढ़ाई की। लगभग 7 विद्यालयों में पढ़ना हुआ
1: जी।
0: सबसे अधिक यदि किसी विद्यालय में रहा तो बेगूसराय के सेंट पॉल स्कूल में क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक रहा। 9th में भोपाल में था और 10th, 11th, 12th दिल्ली में रहा। उसके पश्चात IIT कानपुर 97 से लेकर 2001 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की और IIT से निकलने के तुरंत बाद सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हुआ था, जिसके लिए 2002 वाली परीक्षा में 2003 में रिजल्ट आया और 60वां रैंक मिला, बिहार कैडर मिला इंडियन पुलिस सर्विस। तब से बिहार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
1: जी, बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की IIT कानपुर से, उसके बाद फिर UPSC की परीक्षाएं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली?
0: देखिए, प्रेरणा तो मुझे लगता है बाल्यकाल में ही एक घटना हुई थी। बहुत पहले क्लास 7th में था, समस्तीपुर में एक जगह है पांडव स्थान
1: जी,
0: जहां ऐतिहासिक चीजें मिल रही थी और लोग लूट रहे थे। तो उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन इन्हें रोकेगा, कौन समझाएगा। एक बालक के मन में भाव तो था लेकिन बालक के कुछ सुनने वाला नहीं था। लेकिन अगले दिन मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश लगा दिया है और उस समय धारा 144 लगी और पुलिस फोर्सेज आ गई, तो जो उत्खनन लोगों के द्वारा चल रहा था रुक गया। तभी कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया था कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे समाज में परिवर्तन में मेरी भूमिका हो। आगे चलकर पिताजी की पोस्टिंग जब भोपाल हुई, तब 9th में था, वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया। इस बात ने मेरे मन में बहुत गहरा आघात पहुंचा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक क्यों हो गया। और तब ही मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूंगा जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, इसमें मेरी भूमिका हो। झटके और भी लगने थे, तो उसके बाद IIT की मैंने जब तैयारी की, पिताजी दिल्ली आ गए थे और IIT के पेपर 1997 में अगर आप याद करेंगे लीक हुए थे, उसने भी मेरे मन पर बड़ा गहरा आघात पहुंचाया कि जिस बिहार की भूमि ने कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को दिया, उपनिषदों की दृष्टि दी, वैसे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे छात्र शॉर्टकट्स के पीछे लगे हैं, लोग पेपर लीक कराने तक में लगे हैं। तैयारी मैंने दोबारा की, दोबारा परीक्षा हुई, सिलेक्शन हुआ, IIT कानपुर पहुंचा। पिताजी की पोस्टिंग फिर से हो गई बेगूसराय, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, फर्स्ट ईयर के बाद। और उस समय अंतिम जिसको कह सकते हैं एक ऐसी घटना घटी, घर जाना था, सभी लोग तैयार थे, मेरी भी तैयारी थी, लेकिन घर से फोन आया उस समय कि बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है, तो इसलिए भी लगन का समय चल रहा है, कुछ दिन अब वही कैंपस में रही है। और इस घटना ने लगभग कुछ दिनों तक रहना पड़ा और बहुत उद्वेलित होता था, चिंतित होता था बिहार को लेकर। एक निर्णय मैंने लिया कि अपने जीवन में कुछ तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम सिविल सेवा हो सकता है जिसमें कम आयु में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में हम योगदान कर सकते हैं। बाद में IIT में कैंपस प्लेसमेंट मेरी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी हुई, जर्मनी के कंपनी में भी हुई, लेकिन मन निश्चित हो चुका था कि कुछ करना है और बिहार के वो बदलने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। तो सिविल सेवा की तैयारी मैंने IIT में ही प्रारंभ कर दिया था और निकलते ही मैंने परीक्षा दी और उसी का नतीजा है कि IPS बना और किस्मत अच्छी थी, बिहार मिला, तो बिहार में सेवा देने का अवसर मिला।
1: आपके शिक्षा दीक्षा और आपके व्यक्तिगत जीवन से हमें ये पता चलता है कि सकारात्मक बदलाव लाने के ध्येय से आप सिविल सेवा में आए और बिहार का गौरव वापस करने, या कहें कि देश की सेवा के लिए, देश में, समाज में सुधार लाने के लिए आप इस सेवा में आए और लगातार उसमें आप अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम देखें कि 2003 में आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद ASP, CTSP, सीनियर SP, फिर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी आपने सेवा दी, इसका कुछ अनुभव?
0: बिल्कुल, आपने सही कहा, मन में भाव था समाज को कुछ देना है और एक बड़ा संकल्प था मन में जिसके लिए आज भी काम कर रहा हूँ। तो बिहार में जो पोस्टिंग्स मेरी हुई, शुरुआत में जब आया था औरंगाबाद में ASP के रूप में पहली पोस्टिंग हुई और 2005 के अंत में ASP दानापुर के रूप में पटना में पहली पोस्टिंग हुई थी। वहीं से CT SP पटना बने, फिर बघा SP, रोहतास SP के रूप में पोस्टिंग हुई, जहां अपराध उग्रवाद से उलझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसको समाप्त करने के लिए मैंने प्रयास भी किए जो सफल भी हुए। इसी समय 26/11 का अटैक हुआ था जिसने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मुझे लगा कि एक नई एजेंसी बन रही है NIA जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करेगी, तो अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को इस एजेंसी में जाने का प्रयास करना चाहिए। NIA बनने के कुछ दिनों बाद ही मैंने उसमें आवेदन दिया था। उस समय बिहार में चुनाव होने थे 2010 में, तो चुनाव के बाद 2011 में मुझे NIA के लिए रिलीज किया गया और NIA के शुरुआती दिनों में NIA के संगठित करने में, उसके अन्वेषण में मेरी बड़ी भूमिका रही। उस समय के जो बड़े महत्वपूर्ण केसेस थे मुझे मिले और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करने का प्रयास किया। NIA जाने के बाद पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन में मेरी अनुभव विशेषकर इंटरनेशनल लेवल की पुलिस में किस प्रकार से काम की जाती है, टेररिज्म के लिंकेजेस क्या हैं, कहां से रिक्रूटमेंट होता है, फंडिंग कैसे होती है, इन सभी विषयों पर अच्छी जानकारी मुझे मिली, जो मुझे लगता है प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर आई ग्रू। वहीं से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब आया था तो पटना में पोस्टिंग हुई सीनियर SP के रूप में, जहां पहले ASP भी रहा था, CT SP भी रहा था, अब एक नई भूमिका में सीनियर SP के रूप में था। और उस समय बिहार में 2015 में चुनाव भी होने थे, तो शांतिपूर्ण, भयमुक्त

0: निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, साथ साथ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भी मेरे द्वारा किए गए। उसके बाद एक वर्ष करीब ट्रेनिंग में पटना में ही रहा और पुलिस के प्रशिक्षण में मेरी भूमिका रही। फिर डीआईजी बनने के बाद भागलपुर में लगभग 3 वर्ष डीआईजी के रूप में, कुछ समय मुंगेर में भी रहना हुआ। 27 अक्टूबर 2013 की घटना है जो उस समय पहले बोधगया ब्लास्ट हुए थे 7 जुलाई को, उसके बाद पटना में ब्लास्ट हुए थे। उस समय एनआईए में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और पटना ब्लास्ट से पहले ही लगभग यूं समझें कि हम लोग बोधगया के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और रांची के एक मॉड्यूल पर संदेह था, एक व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने वारंट भी प्रे किया हुआ था। और जब पटना ब्लास्ट हुआ तो लगभग वो संदेह पूरा यकीन में बदल गया और उसका अरेस्टिंग शुरू हुई। एक बड़ा मॉड्यूल समक्ष आया, उसमें अनेक युवक जो रांची के आसपास के रहने वाले थे उनको जो उन्होंने अरेस्ट किया, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ और सभी टेररिस्ट पकड़े गए। बाद में उन केसेस का ट्रायल कराया गया, दोनों ही केसेस में कन्विक्शन हुआ है, बोधगया ब्लास्ट में भी हुआ है और पटना ब्लास्ट में भी। कुछ लोगों को फांसी तो कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई।
1: प्रशासनिक सेवा में रहकर और इतनी जोखिम भरी सेवा, इसमें जान जाने की भी संभावना रहती है और कई लोग हमारे ऑफिसर शहीद भी हो जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार की दृढ़ शक्ति होती है, वो कहाँ से आता है?
0: तो मैंने कहा कि सेवा में आने का कारण एक संकल्प था कि बिहार में बड़ा बदलाव करूं, तो इसीलिए किसी भी संकट के लिए मैं तत्पर रहा, तैयार रहा, तो कभी उसे घबराने का भाव कभी मन में नहीं आया। कहा भी जाता है द प्रोफेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज द डिग्निटी ऑफ डेंजर, तो पुलिस के जीवन में खतरा जो है वो तो उसका अंग है, उसको लेके हम लोग चलते हैं। और कई अवसर आते हैं, मुझ पर भी गोलियां चली थी रोहतास में बहुत नजदीक से, मुझे लगता है 6 इंच करीब से सैकड़ों गोलियां निकली थी, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ कहाँ फंसा। मन में यही भाव था कि मैं निमित्त हूँ, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित ही सपना साकार होगा। बघा से अपराध मिटा, रोहतास से उग्रवाद मिटा, तब मिटा जब लोग जुड़े, उस भाव के साथ जुड़े कि परिवर्तन संभव हो सकता है। आज पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि संकल्प तो बचपन से ही था कुछ करना है, लेकिन जो 2 अनुभव बघा में हुए, जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, पुलिस के अनेक ऑपरेशन व्हाइट पैंथर ब्लैक पैंथर भी हुए और लोग इस कदर हार मान चुके थे कि कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। वहां जब सोच को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया, गन्ना काटा, सरकार के खजाने में पैसे जमा हुए जिस भूमि पर डकैत गन्ना लगाया करते थे, और एक एक परिवार से बात करने के बाद हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता, तो इस बात ने बड़ा गहरा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर डाला होगा और उसी का नतीजा था लगभग 26 गैंग लीडर्स ने सरेंडर किया और जो अपराध 100-150 प्रतिवर्ष किडनैपिंग के रूप में हुआ करती थी शून्य पर आ गई थी जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में भी उग्रवाद चरम पर था, 2002 में DFO शहीद हुए थे, 6 में DSP शहीद हुए थे विक्रमगंज में, अनेक घटनाएं बराबर होती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे, लेकिन तब जब आदिवासियों के साथ हम लोगों ने संवाद किया और कहने लगे कि आपके पूर्वज अति यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है, इस बात ने एक एक गांव में लोगों के मन में बड़ा प्रभाव डाला। और जब अपनी विरासत से अपनी संस्कृति से हम प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बड़े परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रोहतास में जितने भी आदिवासी युवक थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, यह कहते हुए कि क्षेत्र की संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में असीम है और यदि क्षेत्र का विकास होना है तो शांति आनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सभी गांवों में जिन युवकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी उन लोगों ने उग्रवादियों का विरोध किया और ऐसा विरोध किया कि उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। जो अनुभव मुझे मिले उससे मुझे लगता है कि जब पूरे बिहार में हमारे युवा अपने विरासत से प्रेरित होंगे, यह देखते हुए कि बिहार वह भूमि रही है जिसमें जिस काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे सूचना के तंत्र थे, हम कुछ अलग कर रहे थे। अखंड भारत के साम्राज्य की रचना यहीं से हुई, जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी तब हम नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। गणित और विज्ञान का आधार जो शून्य है बिहार की भूमि पटना नहीं दिया। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में जहां स्थापित हुआ, केवल जाति के आधार पर लोग नहीं अपने गणराजाओं को चुनते थे, पूरे उस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर आते थे और बिना विवाद के अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। तो बिहार कुछ अलग भूमि थी। इसकी जब जड़ में जाता हूं क्यों ऐसा था, क्यों हम अलग हुए, तो मैं पाता हूं कि वेदों के जो उत्कर्ष वेदांत को इसी भूमि ने कभी प्राप्त किया था, जिसमें दृष्टि यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और जब व्यक्ति में इस प्रकार की दृष्टि आ जाए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश भी है और पूर्णता लिए हुए, तो ऐसा व्यक्ति जाति संप्रदाय लिंग भेद विचारधाराओं के मतभेदों से परे सोचने लगता है और तब वह संभावना जगती है जहां हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते हैं। तो बिहार में जोड़ने की क्षमता थी, परे सोचने की क्षमता थी, जातियां प्राचीन बिहार में थी, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें कई बार आजकल हम संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, यदि प्राचीन बिहार में रहता तो मगध में नंदवंश का उदय संभव ही नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते। हम लोग अलग लोग थे जिनकी यदि आधार कहें तो वेदांत की उस बृहद दृष्टि में थी। इसीलिए आज मुझे लगता है जब हम उससे प्रेरित होकर हम योगदान करेंगे निश्चित बिहार बदलेगा।
1: जी, आप आपकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से भी काफ़ी प्रभावित हैं और वेदांत दर्शन की भी बात आप कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या समझें वेदांत दर्शन क्या है?
0: देखिए, जैसे वेदों में जब हम लोग पढ़ेंगे, सारी ऋचाओं को देखेंगे, तो हम पाएंगे हम कहीं ना कहीं उपासना भी कर रहे हैं, सभी के लिए कामना भी कर रहे हैं, लेकिन एक रहस्य के बारे में चर्चा होती जब है, तब हम एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। चाहे नासदीय सूक्त हो, उसमें भी हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना जिन्होंने की, क्या उन्हें भी पता है कि उनकी रचना किसने की? वेदांत में जब हम पहुंचते हैं तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस रूप में मिलता है जब हम चार महावाक्यों को देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मतलब सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है उसका एक अंश हर व्यक्ति में विद्यमान है और अपनी पूर्णता लिए हुए है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उसका अंश है। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि है जिसमें हर व्यक्ति उस सृष्टि के मूल तत्व से एकाकार समझने लगता है और इससे पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, और इसमें जिन्हें हम कहीं दूर खोज रहे थे उनको अपने अंदर स्थित पाते हुए जीवन को देखते हैं। तो इससे एक तो एक व्यक्तिगत दृष्टि बदलती है, साथ में समाज में यदि इस प्रकार का भाव जगे तो समाज में भी जो भेदभाव हमें आपस में तोड़ते हैं, अलग करते हैं, वो मिट जाते हैं। तो बिहार में वेदांत की दृष्टि के कारण बहुत सारे अपवाद हम प्रस्तुत कर सके। आज भी मुझे लगता है कि यदि जो भेदभाव समाज में हमें भिन्नता की ओर ले जाते हैं, वेदांत की दृष्टि के साथ यदि हम चलेंगे तो सभी भेदभाव मिट जाएंगे और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं।
1: स्थिति उत्पन्न, कोई भेद नहीं रहेगा,
0: कोई भेद नहीं रहेगा।
1: जी बिल्कुल, ये वेदांत दर्शन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, अद्वैत अभेद। इसके अलावा वेदांत के पहले भी जो चार पांच आस्तिक दर्शन थे, क्या वो विलुप्त प्राय हो गए हैं या उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई अभी?
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रूप में अद्वैत ही है जो जिसने भारतीय संस्कृति को एक वैचारिक दृष्टि दी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो बाकी ज्ञान परंपराएं रही हैं, तो विलुप्त हो गई ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। अभी भी उनको आप पढ़ सकते हैं, उन पर चिंतन कर सकते हैं। अनेक ऐसे चिंतक आज भी आपको मिलेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो परंपराओं को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि हम बात कहें तो कहीं ना कहीं पॉपुलर जो ट्रेडिशन है उसमें अद्वैत मूल में है, लेकिन उसका एक अलग रूप हम देखने को पाते हैं। भारतीय संस्कृति को जो भी समझना चाहेंगे, तो जो हमारे छह दर्शन जिस प्रकार से बात होती है, तो पढ़ेंगे तो हम अपना एनरिचमेंट तो करते ही करते हैं, साथ में विश्व को भी कुछ नया देने की दृष्टि ला पाते हैं। जो आपने बात पहले कही, एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स था, जिसमें कि अलग अलग प्रकार से वेदों की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशन होता गया, और वेदांत एक समय आया जब लगा इससे कुछ ज्यादा नहीं सोचा जा सकता, ये उत्कर्ष प्राप्त हमने कर लिया। तो मुझे गर्व इस बात की होती है कि उस भूमि जहां वेदांत का दर्शन सिद्ध हुआ, बिहार की भूमि रही। और इसी बात को मैं युवाओं को बार बार बताना चाहता हूं कि जिस भूमि ने कभी वेदांत का दर्शन किया हो, विश्वविद्यालय देखे हो, उसमें आज भी बहुत कुछ करने की संभावना है, बशर्ते हम छोटे छोटे भावों से ऊपर उठकर शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने का प्रयास बिहार में करें।
1: जी श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव। आज हमने इनसे कई आयाम, इनके जीवन के कई आयाम पर बातें की और काफी प्रेरणादायक इन्होंने बातें हमारे श्रोताओं को बताई हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहते हैं। विकास वैभव सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रेरणादायक संदेश हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। इस कार्यक्रम में आईपीएस विकास वैभव से बातचीत कर रहे थे सचिन कुमार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।

0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविण मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी विप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की

0: संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ

0: मानताएं हैं, हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience.

0: और दादर नागर हवेली, नीज दमन और दीव शामिल हैं। एसआईआर मरहले तीन के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात अज खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकरर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फहरिस्तों के एसआईआर में मरहला तीन में पूरे मुल्क का अहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं है। इन तीन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरदमशुमारी के मरहला दो की तकमील और बालाई इलाकों या बर्फबारी वाले इलाकों में मौसम पर गौर करने के बाद इन तीनों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एसआईआर के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वोटर फहरिस्त की नजरसानी के अमल में ये एक अहम कदम है। इसका मकसद मुल्क भर में अपडेटेड और दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करना है। केरलम में कांग्रेस कानून साथ पार्टी ने आज थिरुवनंतपुरम में मुनक़िदा मीटिंग में वी डी सथीसन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर लीडर रमेश चेनीथाला पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मजीद तफसील थिरुवनंतपुरम के हमारे नामानिगार से।
1: केरलम में सीनियर कांग्रेस लीडर वी डी सतीसन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने का अपना दावा पेश किया। इससे कबल आज नई दिल्ली में कांग्रेस की कौमी क्यादत ने कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया था। 4 मई को इंतखाबी नतज के बाद गुज्तर 10 दिन से ज्यादा तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में जारी तबादले ख्याल के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि हलफ बर्दारी की तकरीब पीर के रोज होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम्पलूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: तमिलनाडु में AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानी सामी ने आज रियासती गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और SP विलुमणि के जेर क्यादत AIADMK के अरकान कानून साज असम्बली में फूट पड़ने से मुतालिक एक उज्रदारी पेश की। साबिक वजीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले को स्पीकर JCD प्रभाकर के साथ उठाएं। मामला ये है कि SP विलुमणि के जेर क्यादत धड़े में AIADMK के 25 अराकीन कानून साज असम्बली ने TVK सरकार को वोट दिया, जो कि TVK सरकार के खिलाफ वोट न देने के OC मैनियन के जरिए जारी की गई व्हिप की खिलाफ वर्जी है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज्यादा अफराद जां बहक हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर से जाए वकूफ पर पहुंचकर सर्वे करें। उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि वो हर 3 घंटे में मुआवजे की सूरत हाल के बारे में भी अपडेट फराहम करें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज उत्तुंद हवा ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। पटना राजधानी समेत बहुत सी ट्रेनें पटरियों पर दरख्तों के गिरने और OHE वायर को नुकसान पहुंचने के बाइस मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकीं। बारिश के साथ साथ गर्दोगुबार के तूफान ने फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं ने मकानों की छतों को उड़ा दिया, बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका और बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी में खलल डाला। बहुत बड़ी तादाद में मकानात तबाह हो गए और बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बहुत से लोग जिन्होंने दरख्तों के नीचे पनाह ली थी, इस खराब मौसम का शिकार हो गए। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर और वाराणसी शामिल हैं। प्रयागराज में 21 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि भदोही में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9 अफराद, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद ने अपनी जानें गंवाई। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाज आराई के बजाय तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर तआवुन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि आबनाए हुरमुस को हर हाल में खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आजादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुश आइंद रही। मीटिंग के बाद वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने महादाराई के बजाय तआवुन को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को एक दूसरे का

0: कितना बारिश होगा, इसी का अपडेट है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है, उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज है दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और AI बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं। इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो 4-on-1 प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसका AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को, प्रणाली को तैयार किया है, और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किए हैं इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया है, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं, और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहाँ पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा, और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप पे तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश

0: लागू करने की भी योजना है।
1: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है। अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं, इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा, ERG डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
0: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
1: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज जो शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
0: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
1: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इंपैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर जो है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है, इसमें हम लोग वेदर फोकास देते हैं अगले 7 दिन के लिए, और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वो वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल सखी फिर उसका गांव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन

0: पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था, कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है। फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते हैं या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे। फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्रीवाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्रीवाइड।

0: इसके आगे किसी भी वर्ण की परिकल्पना शक्य नहीं है। तो पहली बात यह आती है कि हर भाषा में जो ध्वनि तंत्र है वो ध्वनि तंत्र का मूल संस्कृत है। दूसरा कि भाषाओं का वो पोषण भी करती है। कैसे पोषण करती है? तो संस्कृत ने एक व्याकरण शास्त्र का जन्म दिया, व्याकरण शास्त्र बनाया पाणिनि ने। ऐसे ही एक आचार्य हुए आचार्य यास्क, उन्होंने निरुक्त बनाया। ये व्याकरण शास्त्र और निरुक्त शास्त्र दोनों शास्त्र भाषा का पोषण करते हैं, भाषा को पुष्ट करते हैं। भाषा की पुष्टि का मतलब ये है कि समय के बीतने पर नए नए साधन आते हैं, नए नए वस्तुएं होती हैं, उन साधनों को क्या नाम दिया जाए और नाम देने के पीछे क्या दर्शन होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, इसका थीम हमको आचार्य यास्क बताते हैं। जैसे सूर्य को सूर्य क्यों कहते हैं, ऐसे ही नहीं है कि रेंडमली नाम रख दिया गया है,
1: जो उसके पीछे एक कारण है।
0: उसके पीछे कारण है। वो वनस्पतियों को जन्म देता है, वनस्पतियों की प्रसूति करता है, प्राणियों की प्रसूति करता है, इसलिए वो सूर्य है। तो यदि सूर्य नहीं है तो न तो अंकुर फूट सकते हैं, न मनुष्य जन्म सकता है, न
1: जो एक
0: प्राणी
1: उसका
0: जन्म,
1: वैज्ञानिक पक्ष है।
0: पक्ष है। तो ये माने सिखाया पूरी दुनिया की भाषा को कि आप किसी का भी नाम रखें तो देख लीजिए उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। और उस वजह को भी उन्होंने प्योरीफाई किया किसी न किसी क्रिया के द्वारा, किसी न किसी गुण के द्वारा, या किसी न किसी संबंध के द्वारा उसका नाम जुड़ा रहना चाहिए। जैसे हम आकाशवाणी को आकाशवाणी क्यों कहते हैं, बिना वजह के नहीं है कि वैसे हम व्यवहार में देखते हैं कि बुआ ने नाम रख दिया तो रख दिया,
1: हाँ, वो व्यवहारिक हो
0: वो
1: गया।
0: व्यवहारिक हो गया, उसके पीछे बुआ का कोई विजन नहीं होता। लाइसेंस निकालना है, बर्थडे सर्टिफिकेट निकालना है तो नाम रख दिया। पर आकाशवाणी जब नाम रखा गया तो ये आकाश की वाणी है, आकाश से आने वाली वाणी है, आकाश में घूमने वाली वाणी है। तो आकाश में घूमने की क्रिया करने वाली जो वाणी है वो आकाशवाणी है। तो भले हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं पर हम लोगों के घर में घुसेंगे आकाश के माध्यम से,
1: जो प्रसारित होने का जो
0: प्रसारित होने का जो कॉन्सेप्ट है वो उस नाम में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसी तरह से हर किसी नई आने वाली वस्तु का जब हम नामकरण करें, क्योंकि वो तो वस्तु आ गई तो दुनिया भर में फैलने वाली है, दुनिया भर में जहां जहां भाषा के भाषक लोग बैठे हुए हैं वो उसका नाम की अपेक्षा रखेंगे, तो कैसा नाम होना चाहिए? तो यास्क ने एक शास्त्र दिया जिसको निरुक्त शास्त्र कहते हैं, उसमें ये बात बताई कि नाम ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसमें कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए, कोई ना कोई गुण होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो इस तरह से संस्कृत के शास्त्रों ने भाषाओं को पोषण दिया, आज भी दे रही है। और तीसरी बार जब जननी की होती है तो व्यवहार सिखाती है। संस्कृत भाषा का जो स्ट्रक्चर है, संस्कृत भाषा को जिस तरह से बुना गया है, उसने हमको मनुष्य के रूप में जीवन जीने का एक तरीका भी बताया।
1: और ये बात तो हम लोगों ने सुना है कि संस्कृत भाषा को कहा जाता है कि ये देवों की भाषा है। कर्ण जी, आप इस पर प्रकाश डालें कि इसे देवों की भाषा क्यों कहते हैं?
2: अन्यान्य जो भाषाएं हैं उनमें इस प्रकार की दिव्यता नहीं है। दिव्यता से तात्पर्य यह है कि जब हम इस भाषा का उच्चारण करते हैं तो हमारा मनोमस्तिष्क है वो सब झंकृत होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आरोह अवरोह है, जो इसकी संरचना है, सुघटना है, वो इस प्रकार की है कि वो अगर गद्य भी है तो भी अगर उसको ठीक से शुद्ध उच्चारण कोई करता है तो लगता है कि कविता में कोई बात कर रहा हो। मन को जो उच्चारण करने वाला है उसे भी और जो उसका श्रोता है उसको भी, दोनों को ही झंकृत करता है। इसी दिव्यता के कारण इसको देववाणी कहते हैं। और जो कोई इसका उच्चारण करता है या श्रवण मनन पठन करता है उसमें भी इसके गुण आ जाते हैं, यही इसके देववाणी कहने के पीछे का स्वरूप है। दूसरा, वाणी के जो स्तर बताए गए हैं, चार प्रकार के स्तर बताए गए हैं, बैखरी है, परा है, पश्यंती है, मध्यमा है, ये स्तर इसी संस्कृत भाषा को लेकर के विचार किया गया है। इसके कारण से इसको देववाणी की जो संज्ञा है या जो विशेषण है
1: देवों की
2: उसे
1: भाषा।
2: इसको, हाँ, इसको इसको विभूषित किया गया। सामान्य रूप में लोग कहते हैं कि भाई देवताओं की स्तुति इत्यादि संस्कृत में ही रहती है मूल रूप से,
0: जी
2: इसलिए
0: जी जी
2: इसको।
0: को हम इस तरह से भी समझा सकते हैं संस्कृति पद्धति से कि लोग ऐसा मानते हैं कि देवताओं को बुढ़ापा नहीं आता, देवताओं के
1: काला
0: शरीर पर पसीना नहीं होता, हमेशा फ्रेश रहते हैं। संस्कृत भाषा जब से भी अवतरित हुई है तब से उसमें बुढ़ापा नहीं आया है, वैसी की वैसी है। और संस्कृत भाषा को कभी पसीना भी नहीं आता, वो बिगड़ती भी नहीं है। एक उदाहरण ले कि जैसे हॉस्पिटल शब्द है, आप भारत में ही घूम करके देखिए इसके कितने उच्चारण मिलेंगे। आप मूलतः अंग्रेजी शब्द है।

0: पर अंग्रेज लोग अलग अलग कॉलोनी में गए तो उस कॉलोनी के लोगों ने भी इस शब्द को कोई हॉस्पिटल, कोई अस्पताल, कोई इस्पिताल,
1: कोई अस्पताल,
0: हस्पताल
1: हर कोई अलग अलग रूप
0: अलग
1: दिया
0: अलग
1: उसको।
0: कर दिया, तो वो तो पसीना आ गया है ना।
1: निश्चित तौर पे।
0: संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में एक शब्द है, जैसे एक कठिन शब्द बोलता हूं मैं आपके सामने, कार्त्स्यम
1: जी
0: है ना, इसमें कितने ही संयुक्ताक्षर है, पर वो कोई भी आदमी बोलेगा, विद्यार्थी बोलेगा, गुरुजन बोलेगा, बूढ़ा बोलेगा, 100 वर्ष पहले बोलेगा बोला हो, 1000 वर्ष पहले बोला हो, या 1000 वर्ष बाद में बोलेगा, गुजराती हो, मराठी हो, है नहीं, अपने बिहार के कोई सज्जन हो, लोकल प्रोनाउंसिएशन उनका जो भी है वो, पर वो जब कार्त्स्यम बोलेंगे तो कार्त्स्यम ही बोलेंगे,
1: इसलिए इसको ऐसा
0: देव
1: समझ
0: है।
1: सकते हैं कि पूरा युवती है ये,
0: हाँ पूरा
1: प्राचीन
0: युवती,
1: भी है। अब लोगों को लगेगा कि ये कंट्रास्ट कैसे हो सकता है कि जो युवती है वो प्राचीन वृद्धा कैसे हो सकती है, जो
0: हाँ,
1: वृद्धा है वो
0: तो
1: युवती कैसे हो
0: इसलिए
1: सकती
0: उसमें
1: है।
0: देवत्व है।
1: लेकिन संस्कृत जो है न जाने कब से चली आ रही है, अत्यंत वो शास्त्रीय होने के साथ साथ आधुनिक भारतीय भाषा है, इसलिए वो पूरा युवती उसका विशेषण हम समझ सकते हैं इस रूप में।
0: उस दृष्टि से वो देवभाषा है।
1: बहुत सारी भाषाएं रही लेकिन विलुप्त हो गई, जैसे कि मैं एक भाषा का उदाहरण दे सकूं, जैसे कि लैटिन लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज के समय में संस्कृत जीवित है। इसके पीछे क्या कारण है?
0: इसके पीछे हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा विजन दृष्टि रही। देखिए, इस पृथ्वी पर मनुष्य कब से है हम उसकी चर्चा नहीं करते, पर हजारों वर्ष से है, और मनुष्य के पास प्रकृति ने, भगवान ने एक शक्ति दी है कि वो नया ज्ञान भी अर्जन कर सकता है, करता है। इसी कारण से सब संसार बना हुआ है। पशु पक्षियों का ज्ञान निश्चित है, वो अपने ज्ञान में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते, पर मनुष्य के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने एक संकल्प लिया कि हमें यदि किसी भी ज्ञान का एक बिंदु प्राप्त होगा तो हम उसको संस्कृत में ट्रांसफर करके रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तक हमको वो ज्ञान पहुंचाना है। तो ज्ञान के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साधन क्या है? भाषा है। तो आप देखिए, 5000 साल पहले मानो कि कोई महापुरुष हुआ और उसको लगा कि विद्या एक बहुत अच्छी वस्तु है, उसके पास उसके कुछ तर्क आ गए, अथवा पशु पक्षियों से मनुष्य क्यों अलग है, उसके पास उसके कुछ कारण आ गए, वजह आ गई, उसको दिखाई दिया कि पशु में और इन मनुष्य में ये फर्क है। तो उस ज्ञान को उसने संस्कृत में कन्वर्ट करके, वो अपने जमाने में कौन सी भाषा बोलते थे आज हमारे हमारे को मालूम नहीं है, आपस में क्या चर्चा
1: उसको
0: करते थे।
1: संरक्षित कर दिया, भावी पीढ़ी के लिए
0: हाँ, संस्कृत में कन्वर्ट करके भावी पीढ़ी के लिए
1: संरक्षित कर दिया।
0: संरक्षित कर दिया। दूसरा कार्य ये हुआ कि आचार्य पाणिनि ने एक व्याकरण लिखा, जो व्याकरण इस तरह से लिखा गया कि वो स्वयं अपने संस्कृत भाषा को डिकोड करता है। इसको व्यवहारिक दृष्टि से मैं ऐसे समझाने का प्रयत्न करूंगा कि जैसे पेन ड्राइव है, उसमें हम बहुत सारी वस्तु फीड करके रखते हैं,
1: मेमोरी डिवाइस है, उसमें हम लोग सेव
0: है नहीं,
1: रखते हैं।
0: सेव
1: हाँ,
0: रखते हैं, पर आप कल्पना कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा,
1: तो परेशानी
0: लैपटॉप
1: रहेगी।
0: कंप्यूटर नहीं होगा तो क्या होगा। आप कल्पना कीजिए कि 400 वर्ष के बाद किसी को पेन ड्राइव मिल गई, वो ये पेन ड्राइव को डिकोड कैसे करेगा, उसको मालूम ही नहीं है
1: कि क्या प्रोसेस है, क्या तरीका
0: क्या
1: है,
0: तरीका,
1: प्रक्रिया क्या है।
0: और मानो के उसको मालूम पड़े तो वो साधन रहेंगे कि क्या, ये भी तो सवाल है,
1: हाँ, आज से कुछ वर्षों के बाद कौन सी चीज जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा
0: हो
1: है,
0: रहा है,
1: विकास हो रहा है, उस समय क्या रहेगा
0: क्या
1: क्या
0: रहेगा,
1: नहीं,
0: कुछ
1: ये
0: नहीं
1: नहीं कहा जा
0: मालूम।
1: सकता।
0: पर पाणिनि ने संस्कृत भाषा को इस तरह से डिकोड किया कि आपको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती, पर पाणिनि का व्याकरण यदि आपको मिल गया तो आप संस्कृत को डिकोड कर सकते हैं। इतना उन्होंने व्याकरण के सूत्र बनाए, व्याकरण की इस तरह से योजना की, व्याकरण नाम का एक ऐसा यंत्र तैयार किया, जिस यंत्र में आप प्रवेश करो आपको अपने आप संस्कृत भाषा डिकोड हो जाएगी। मैं कहूं आपको कि जैसे मैंने पाणिनि व्याकरण पढ़ा, उसका मुझे बेनिफिट क्या मिला, 2000 वर्ष पहले कालिदास जो बोल रहे हैं उसको मैं समझ सकता हूं,
1: उस समय और क्लिष्ट भाषा का, शब्दों का चयन हुआ होगा
0: पर फिर मैं आज समझ सकता हूं बिकॉज पाणिनि,
1: पाणिनि के व्याकरण की वजह से।
0: पाणिनि व्याकरण की वजह से। 1000 वर्ष पहले कई विद्वान हुए, उन्होंने जो कृतियां लिखी, चाहे काव्य लिखे चाहे नाटक लिखे, आज मैं समझ सकता हूं। 500 वर्ष पहले जो हुए, उन्होंने नाटक लिखे, काव्य लिखे, शास्त्र लिखे, उसको भी मैं समझ सकता हूं। 50 वर्ष पहले जिसने संस्कृत में लिखा बोला, आज मैं समझ सकता हूं। इतने लंबे कालखंड में जिसने भी संस्कृत बोला, उस संस्कृत को समझने की शक्ति मेरे अंदर है,
1: सिर्फ एक पाणिनि के
0: पाणिनि व्याकरण के
1: व्याकरण के
0: कारण।
1: कारण।
0: आपने लेटिन की बात कही ना,
1: जी
0: लेटिन के कितने लेयर्स हैं, अंग्रेजी में कवि हुए चौसर, कहने के लिए तो इंग्लिश के कवि हैं, नाट्यकार हैं, पर आज आप सर्वे करो, चौसर की भाषा को समझने वाला

0: आदमी मिलना मुश्किल है, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में कालिदास को समझने वाले लोग भी है, वाल्मीकि को समझने वाले लोग भी है, व्यास को समझने वाले लोग भी है, शंकराचार्य को समझने वाले भी लोग है, और ये बिहार की पटना की नव्य न्याय शास्त्र की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। वो ऐसी एक लैंग्वेज है जिसकी परिकल्पना दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की, पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो कहा जाता है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है, उसके पीछे नव्य न्याय की भाषा भी एक कारण है, उसकी चर्चा का विषयांतर हो जाएगा।
1: जी
0: पर
1: जी
0: कहने का मतलब ये है कि संस्कृत इसलिए भाषाओं की जननी है कि उसने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो स्ट्रक्चर किसी न किसी रूप से दुनिया भर की भाषा को व्यवहार बताता है कि आपको भाषा कैसे खड़ी करनी है।
1: वो जो एक जो बेस तैयार करना हुआ, वो बेस आपको संस्कृत तैयार करके देती है, वो
0: देती
1: सतह
0: है
1: देती है जिसकी वजह से आप अलग अलग शाखाओं के रूप में भाषाएं पनप रही हैं, बढ़ रही हैं, आगे चल रही हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। कर्ण जी, आपसे हम एक चीज़ है कि जब भी लोगों से बातचीत होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि संस्कृत की रचना नहीं हुई है, संस्कृत की खोज हुई है। जैसे बाकी भाषाएं जितनी भी हैं उन्हें बनाया गया है, उन्हें तैयार किया गया है।
2: हाँ, ये एक नैसर्गिक भाषा है। नैसर्गिक इसलिए है कि इसके सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता की कोई अभी तक प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि किसने इसका प्रयोग किया। ये स्वाभाविक इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत की भूमि से यह भाषा निकली हुई है, तो सबसे पहले वैदिक वाङ्मय में है। तो जो हमारे ऋषिगण थे जिन्होंने मंत्रों की मंत्र द्रष्टा के रूप में हुए थे, तो उन्होंने मंत्रों की सृजना नहीं की, सृष्टि नहीं की। उन्होंने अपने जो ये काया, उनकी पांच तत्व, पांच भौतिक तत्वों से बनी हुई जो काया है, उसमें ही उन्होंने प्रयोग किए और उन्हें ये जो दिव्य स्वर थे वो सुनाई दिए, उनका उन्होंने साक्षात्कार किया और लोक मंगल के लिए उन्होंने गाया। और जो भारतीय भाषाओं पर इसका जो प्रभाव है वो इस प्रकार से है कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1700 धातुएं हैं लगभग संस्कृत वाङ्मय में, और उससे 6,80,000 शब्द तो सीधे सीधे बनते हैं, और फिर प्रकृति प्रत्यय इत्यादि को मिलाकर के लगभग 7 करोड़ शब्द बनते हैं। तो इतनी बड़ी शब्द संपदा किसी अन्य जो भाषा है उसके पास नहीं है, 7 करोड़ शब्दों का। और उसमें भी और भी जो चाहें तो उसकी वृद्धि हो सकती है जब उसके अन्य अर्थ एक ही धातु के अन्य अर्थ निकलते हैं ऐसा करके, लेकिन मोटा मोटा 7 करोड़ शब्दों की संपदा है। तो निश्चित रूप से ये जो भारत की जो समस्त भारतीय भाषाएं हैं उस पर इसका प्रभाव है गहरा। उदाहरण के लिए हम दो चार भाषाओं के शब्दों को लेते हैं, जैसे बिहार की भाषा मान लीजिए मैथिली है, तो मैथिली में कोई मैथिली भाषी कहता है कि की करै छी, तो संस्कृत में उसको कहते हैं किम करोति। अब करै छी और करोति में देखिए कितनी साम्यता है, और की करै छी और किम में कितनी साम्यता है। उसी तरह से आप देखिए कि मैथिली में मैं शब्द नहीं है, हम है ना, तो अहम का रूपांतरण है संस्कृत में, हम के लिए अहम है,
1: आम का
2: व्यक्ति जो
1: रूपांतरण।
2: इंडिविजुअल कोई कहता है कि हम करोमी, तो मैथिली में कहते हैं कि हम करै छी, हम करोमी, हम करै छी में अहम और हम में देखिए कितनी साम्यता है, और करै छी और करोमी में कितनी साम्यता है। वैसे ही देखिए आपकी, जैसे उसमें कहते हैं कि हमर नाम ई एच, या हमर नाम, हमर गांव का नाम ई एच, तो ये जो हमर है, ये हमर जो है वो मम है, ठीक है ना, और अच जो है वो अस्ति है, अस्ति माने है, अच माने है। तो किसी बालक को नाम पूछते कि तुहर नाम की छो, तो तब नाम की मस्ती, देखिए संस्कृत की कितनी साम्यता है, तब नाम की मस्ती है ना। तोहर घर कत छो, तब गृहम कुत्र अस्ति, गृहम गृहम, तो गृह से गृह, ये तो शब्द का विस्तार अर्थ संकोच इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। तो जब हम चलते हैं बांग्ला की ओर, यहीं पास, चूंकि मैथिली और बांग्ला ये दोनों पर बहुत आपस का अनुनाश्रय संबंध है, द्वारवंग उसका नाम है, दरभंगा का बंग की ओर जाने का चूंकि मार्ग है इसलिए वो दरभंगा द्वारवंग है, बंग जाने का रास्ता होने के कारण उसका मूल नाम द्वारवंग है। तो बांग्ला में देखिए कि सीधे सीधे शब्द जा रहे हैं, 55% शब्द बांग्ला में सीधे जाते हैं। मैं कुछ शब्दों को यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे उपसर्गों के द्वारा संस्कृत का शब्द जो बनता है, तो अति, अतिशय, बांग्ला में सीधे सीधे अतिशय का प्रयोग होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है ना, अतिशय। वैसे ही अत्याचार, ये बांग्ला का भी शब्द है और संस्कृत का शब्द है,
1: जी
2: संस्कृत में अत्याचार रहा, संस्कृत में अतिशय और बांग्ला में अतिशय, अत्याचार। अधिकार, अधिकार शब्द सीधे सीधे बांग्ला में वैसे ही प्रयोग होता है, अधिपति, अधि उपसर्ग से, अभिलाषा, अभियोग, अवशेष, अवनति, ये सब बांग्ला में सीधे प्रयोग हो रहे हैं। इसी तरह से बांग्ला में, संस्कृत में हम कहते हैं आरंभ, बांग्ला में कहते हैं आराम, उसी तरह से

0: कहते हैं आचरणम, बंगला में कहते हैं आचरण। इसी तरह से हम कहते हैं संस्कृत में निवासा, वो कहते हैं निवास। हम कहते हैं नियुक्ता संस्कृत में, वो कहते हैं नियुक्त। हम कहते हैं प्रसारा, वो कहते हैं प्रसार। हम कहते हैं परिजन, वो कहते हैं परिजन। हम कहते हैं परिपूर्ण, वो कहते हैं परिपूर्ण। हम कहते हैं विदेशा, बांग्ला में कहते हैं विदेश। हम कहते हैं विभागा, वो बंगला में कहते हैं विभाग। वो बंगला में कहते हैं सम्मेलन, बंगला में कहते हैं संग्रह, बंगला में कहते हैं सृजन, बंगला में कहते हैं सुगम, सुगम संगीत। वो बांग्ला में भी सुगम शब्द है,
1: जी
0: संस्कृत का
1: जी
0: भी सुगम है। उसी तरह
1: जी
0: से वो बोलते हैं बांग्ला में कर्मठ, अन्यत्र, बुद्धिमान, ग्राम्य, मधुर। ये सब बांग्ला में सीधे संस्कृत से गए हुए शब्द है। विद्यालय बांग्ला में विद्यालय ही होता है, संस्कृत में विद्यालय होता है। हम बोलते हैं आगच्छति,
1: मतलब हम अगर
0: आगच्छामि।
1: प्रभाव देखना
0: पूरा
1: चाहें तो
0: प्रभाव है,
1: संस्कृत का
0: पूरा बांग्ला
1: प्रभाव हर
0: का।
1: भाषा पे
0: हाँ,
1: दिखता
0: उस पर
1: है।
0: पूरा प्रभाव। उतना ही नहीं तो आप चले जाइए हिमाचल, और हिमाचल की बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग 12-13 भाषाएं हैं। उसमें से जो एक है वो है किन्नौरी और दूसरी है कांगरी। तो कांगरी में संख्या को देखते हैं, संस्कृत में हम लोग एकम, द्वे, त्रीन, चतुर, पंच, षट, सप्तन, अष्ट, नव, दस ऐसा बोलते हैं। और जब हम कांगरी में जाते हैं तो कांगरी में एकम को इक बोलते हैं, दो को या द्वि को वो दो बोलते हैं, हम त्रि बोलते हैं वो तीन बोलते हैं किन्नौरी में, चतवारा बोलते हैं वो सीधे सीधे चार बोलते हैं। तो ये इसकी साम्य है, और उसकी कांगरी भाषा की और संस्कृत का उसका प्रभाव हिमाचल की उस कांगरी भाषा पर भी है। जो वहाँ की बोली जाने वाली एक भाषा है किन्नौरी, उस किन्नौरी में भी जैसे संस्कृत में बोलते हैं माँ कुरु, वो भी बोलते हैं माँ। माँ को, माँ का उनका अर्थ, उनका निषेध है।
1: जी
0: इसी तरह से वो जैसे हम लोग संस्कृत में रिक्शा बोलते हैं, वो बोलते हैं रिखा।
1: अच्छा
0: वही
1: वाह
0: रिक्श ही वहाँ उनके यहाँ भालू के लिए
1: जी
0: रिखा हो गया। जो हम दिव बोलते हैं संस्कृत में दिन, वो दिबू बोलते हैं। हम विद्युत बोलते हैं, वो किन्नौरी में बिजुल बोलते हैं, बिजुल, बिजुल। अब बिजुल और विद्युत में कितनी साम्यता है, तो कहाँ से प्रभाव हुआ होगा? जब पूर्ववर्ती संस्कृत है तो निश्चित रूप से किन्नौरी पर उसकी। हम बोलते हैं संस्कृत में भूमि, वो बोलते हैं भू। तो ये भारतीय जो अन्य भाषाएं हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे उड़िया
1: सब
0: हो चाहे
1: पर
0: मराठी हो,
1: संस्कृत का
0: सब पर
1: प्रभाव है।
0: संस्कृत का
1: हाँ,
0: प्रभाव है।
1: आप थोड़ा उसका कारण है, देखिए आप थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे ना तो वर्तमान में भारत में जितनी भी प्रांतीय भाषाएं हैं और दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में तीन प्रकार के शब्द हैं देखने को मिलेंगे आप। एक प्रकार के शब्दों को देशीय कहते हैं, जो उनकी लोकल प्रोडक्ट है नहीं, पर उसका प्रमाण बहुत कम होता है। दूसरे शब्द मिलेंगे तद्भव। तद्भव का मतलब है किसी दूसरी भाषा में से वो ले आए हैं और अपने अनुरूप उसको ढाल लिया है।
0: डाल लिया है, उसको तद्भव कहते हैं। और तीसरे शब्द जो है वो तत्सम है, एक्स
1: तत्सम
0: भाषा में थे वही के वही उठा करके वाई भाषा में आ गए। जैसे सर ने अभी सब बताए,
1: अन्य
0: अधिक
1: शब्दों का प्रयोग बताया है।
0: अधिकार है यानी अत्याचार है, ये तत्सम है। संस्कृत में थे ऐसे कैसे अडॉप्ट कर लिए, पर संस्कृत में त्रि शब्द था उसको मॉडिफाई करके तीन बना दिया, तो तीन नया शब्द नहीं है, वो संस्कृत के त्रि में से उद्भव हो गया,
1: उसका रूपांतरित
0: रूपांतरित हो
1: रूप
0: गया,
1: है।
0: उसको तद्भव कहते हैं। और मनुष्य है, उसके पास बुद्धि भी है, मनुष्य समाज कुछ नए शब्दों को भी क्रिएट कर देता है, वो उसके देशीय शब्द होते हैं, पर उसका परसेंटेज बहुत कम होता है।
1: देशज शब्द के
0: हाँ, देशज शब्द है, वो
1: जी
0: लोकल है। तो भारत की जितनी भी प्रांतीय भाषाएं हैं उनमें 60% तत्सम और तद्भव शब्द हैं, और 10% 20% दूसरे देशों की भाषा का, जैसे अरबी फारसी है, अंग्रेजी है। जैसे अपने आपने बताया ना कि अंग्रेजी भाषा क्या है, वो लेटिन और ग्रीक का मिक्स रूप है।
1: उसका कोई अपना कोई एक अकेला वो रूप में नहीं आया है
0: हाँ, तो
1: वो।
0: वो ये टेली और विजन, टेली एक भाषा का शब्द है, विजन दूसरी भाषा का शब्द है, दोनों भाषाओं में से शब्द लेकर के अंग्रेजी में टेलीविजन आ गया। तो आज जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं में तीन प्रकार के शब्द दिखेंगे,
1: तत्सम
0: तत्सम,
1: तद्भव
0: तद्भव
1: देशज।
0: और देशीय शब्द। ये तत्सम शब्द जितने भी भारत की प्रांतीय भाषाओं में हैं वो संस्कृत के हैं, या फिर 5% 10% अरबी फारसी के हैं, या 5-10% अंग्रेजी के या ग्रीक के या लेटिन के,
1: वो तो समय के
0: वो समय के
1: अनुकूल
0: अनुरूप, मतलब
1: अनुरूप उसको लिया गया
0: हाँ,
1: है।
0: वो भी पड़ोसियों के कारण आ गए है नहीं।
1: वो तो आदान
0: हाँ,
1: प्रदान
0: आदान प्रदान के
1: हम
0: हिस्से से
1: लोगों
0: आ
1: के
0: गए,
1: भी बहुत सारे शब्द उन लोगों ने
0: आ
1: लिए।
0: गए। हाँ, हमारे भी शब्द ले गए कई। तो संस्कृत में आप जितने भी शब्द देखेंगे उसमें कोई तद्भव नहीं है, कोई देश्य नहीं है, संस्कृत में सब ओरिजिनल शब्द हैं, वो कहीं से आए उसका कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, और संस्कृत के लोगों ने उसको मॉडिफाई भी नहीं किया है।
1: इसलिए उसमें तद्भव शब्द भी

0: नहीं देखेंगे। व्रत वालों ने व्रत ले लिया कि हम नया शब्द नहीं बनाएंगे, हम तो वही के वही रखेंगे जो हमारे परापूर्वज है। आज भी संस्कृत में वही शब्द दिखाई देंगे जो व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, बाण सबने प्रयोग किए।
1: कमलेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और काफी सरलता से आप लोग बातें बता रहे हैं, जहां आज के हमारे युवा कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रति उतना आकर्षण नहीं रख रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि उनका आकर्षण इस ओर होना चाहिए। इसी से जुड़ा एक प्रश्न मैं कर्ण जी आपसे पूछना चाहूंगी कि हिंदी को आज के जो युवा वर्ग हैं वो उसे उसे क्लिष्ट भाषा समझते हैं।
2: दुनिया की कोई भी भाषा क्लिष्ट और सरल नहीं होती। भाषाएं तो केवल परिचित और अपरिचित हुआ करती हैं। जो भाषाएं हमारे लिए परिचित है वो हमारे लिए सरल है, और जो भाषाएं हमारे लिए अपरिचित है वो हमको कठिन लगती है। वस्तुतः भाषा के दो स्वरूप हैं, प्रौढ़ रूप और सरल रूप। जब तक वह साहित्य में रहता है, ग्रंथ लेखन में रहता है, तब तक उसका वो प्रौढ़ रूप रहता है। जब वो व्यवहार में आता है, जीवा सरलता में विश्वास करती है, तो उसका सरल रूप होता है। वो कठिन जैसी कोई चीज़ अपरिचित है, चूंकि युवा उससे परिचय नहीं प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही वह जब वो कठिन से कठिन के बने हुए व्याकरण के शब्दों को जब वो याद कर लेता है, समझ लेता है, तो संस्कृत सिक्के व्याकरण से ओतप्रोत हिंदी है, तो हिंदी उसको कठिन कैसे लग सकती है। वो केवल परिचय और अपरिचय का विषय है। और प्रौढ़ चूंकि ग्रंथ में जब लिखा लेखक होगा तो लेखक उसको चारुता प्रदान करने के लिए उसका प्रौढ़ स्वरूप देता है, लेकिन जो लोकप व्यवहार में जब आ जाता है तो उसका सरल स्वरूप होता है। तो ये युवाओं की केवल भ्रांति मात्र है कि हिंदी कठिन है। वस्तुतः दुनिया की कोई भाषा कठिन और सरल नहीं होती, वो परिचित और अपरिचित होती है, नोन और अननोन होती है।
1: प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम किसका कितना प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा
2: जी
1: उतनी ही
2: जी
1: सरल
2: जी
1: हो जाएगी।
2: जी
1: डॉक्टर कमलेश चौकसी, आप हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय कुमार कर्ण, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत आभार।
0: उपसंहार करते समय प्रसादी के रूप में एक छोटी सी बात कहनी है।
1: जी,
0: गेहूं जो है ना, वो संस्कृत भाषा है, और वो उस गेहूं के बेज से फिर पराठा बना, रोटी बनी, समोसा बना, है नहीं? ये सब दूसरी भाषा है। तो गेहूं ओरिजिनल है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो जब आगे बढ़ा रोटी के रूप में, समोसा के रूप में, बिस्किट के रूप में, तो दूसरी दूसरी वस्तुओं को उसने एडॉप्ट कर लिया, अपने साथ में रख लिया। भाषाओं के ग्रथन की भी यही स्थिति है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई, और आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे साथ इतनी अच्छी परिचर्चा साझा की। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुनेंगे कुछ ही देर में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो गए हैं और वक्त हो गया है फिल्म संगीत सुनने का। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था हीरा। इंदिवर के बोल और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आवारा से लता मंगेशकर की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। आवाजें लता मंगेशकर, मुकेश चंचल, जाने बाबू और साथियों की, वर्मा मल्लिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

0: इस वक्त आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अभी जारी है, इस छोटे से अंतराल के बाद शेष गीत सुनेंगे।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म अनजाना का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज़ में फिल्म ठोकर से।

अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गीत। उषा खन्ना ने तर्ज बनाई है और निदा फाजली के बोल।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे मेरे यानी जया के साथ। कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।

0: का। केरल में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरल में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो गए हैं और इसी के साथ संपन्न हो रहा है हमारा आज का यह कार्यक्रम। कल सुबह 5:43 पर हम पुनः आपके लिए कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।